मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रवण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। सवेरे के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के

0: कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्ता से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जहां भक्ति है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण मन को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करता है। हनुमान जी की भक्ति में समर्पण भी है और विश्वास भी। इसी भाव को समेटे हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भजन। तो आइए कुछ पल अपने मन को भक्ति के रंग में रंगते हैं और करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण।

हरिहरन और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी संगीत में भक्ति रचना। श्रोताओं, राम नाम में ऐसी शक्ति है जो मन को शांति देती है और जीवन में विश्वास जगाती है। प्रभु श्री राम केवल एक नाम नहीं बल्कि सत्य, मर्यादा, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। कहते हैं कि जब मन सच्चे भाव से प्रभु को याद करता है तो हर चिंता उनके चरणों में समर्पित हो जाती है, क्योंकि इस संसार में देने वाला भी वही है और पालनहार भी वही है। इसी सुंदर भाव को अपने भीतर महसूस करते हुए आइए अब सुनते हैं ये एक और भजन।

कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में भी आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, सच्चे गुरु की वाणी मन को उस परमात्मा से जोड़ती है जो हर पल हमारे साथ है। जब इंसान अपने प्रभु को मन के चरणों में समर्पित कर देता है तो भीतर एक अलग ही शांति और

विश्वास का जन्म होता है। गोविंद के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा अगला शब्द हमें संदेश देता है कि हमारा सच्चा सहारा वही परमात्मा है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं ये सुंदर सा शब्द।

सुरेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये शब्द। श्रोताओं, नाते पाक में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान की खूबसूरत अभिव्यक्ति होती है। मेराज का जिक्र उस मुबारक सफर की याद दिलाता है जिसे इस्लामी परंपरा में बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी अकीदत और मोहब्बत

से सजी एक खूबसूरत नात अब आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। तो आइए अपने दिलों को इश्क़ रसूल की रोशनी से रोशन करें और सुने ये नात।

उषा टंडन की आवाज में अभी आपने सुनी ये नात। श्रोताओं, भक्ति में जब श्रद्धा जुड़ती है तो मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। भगवान हनुमान जी को संकट मोचन, बल और साहस के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनके स्मरण मात्र से भक्तों के मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए अब भक्ति और श्रद्धा के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का गुणगान करें और उनकी आरती में शामिल हों। तो प्रस्तुत है भक्ति भाव से परिपूर्ण ये आरती। आप भी अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाइए और इस पावन आरती का आनंद लीजिए।

नितिन मुकेश और अनुपमा देश पांडे की गाई इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर, संगीत है सतीश भाटिया का।

भरत को श्री राम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासु रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्री राम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया।

और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी। उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी उदास हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सदियों पूर्व महाभारत का कालखंड वर्तमान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राजनेताओं की स्तुति में लगे हुए बुद्धिजीवी सत्ता राजकृपा के अभिलाषी हैं। लेखक, कवि, विद्वान आदि समाज में आए दिन होने वाली घटनाओं के दमन, बलात्कार, अपहरण, छल कपट, घोटालों आदि को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। सरल मन, साधु स्वभाव, ज्ञानी जन की मन स्थिति बहुत कुछ अवश्य है। भीष्म और द्रोण की तरह यही तो महाभारत के कालखंड और वर्तमान की समानता है। महाभारत का कालखंड बहुत कुछ वर्तमान जैसी घटनाओं और ऐसे ही चरित्रों से भरा पड़ा है। दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे शाश्वत ग्रंथ को पूजा और चर्चा की वस्तु बनाकर छोड़ दिया है और कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया है। यदि ऐसा किया होता तो हम भारतवासी वर्तमान के नारकीय जीवन की रचना न होने देते, पर ऐसा नहीं हो सका। आज स्थिति ये है कि मूल्यों के अवमूल्यन और विश्रंखलन की स्थिति वही है जो उस कालखंड में थी। व्यासकृत महाभारत के सभी सत्य वर्तमान में हमें

0: पड़ रहे हैं। अवश मानसिकता वाले भीष्म और द्रोण की ओर संकेत हम कर चुके हैं। हमारे बीच कर्ण भी है जो समाज में अपने वांछित अधिकार पाने के लिए छटपटा रहे हैं, और वो व्यवस्था भी है जो कर्ण जैसे योग्य और क्षमता संपन्न व्यक्तियों को कुंठाग्रस्त करके उसे नाश का मोहरा बना सकती है। महाभिमानी और शक्ति मदांध दुर्योधनों के दर्शन पग पग पर होते हैं। आदि अंतर केवल इतना है, तब कृष्ण मौजूद थे और अब कृष्ण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और उन्हें यदा यदा ही धर्मस्य वाले उनके संकल्प की याद दिला रहे हैं। तब अर्जुन मौजूद थे जिनके गांडीव की टंकार अधर्म के नाश का संदेश सुनाती थी। वर्तमान के मनुष्य में वो मानव विद्यमान है जो हर कालखंड में लिप्सा, घृणा, स्वार्थ, संवेदना, ममता, क्रोध, षड्यंत्र, लोभ आदि में निमग्न रहा है, जो मनुष्य की मूल वृत्तियां हैं और जिनसे उनके विलग होने की संभावनाएं प्रायः नहीं के बराबर हैं। दुर्भाग्य ये है कि मूल्यों की अवहेलना उन्हीं के हाथों हो रही है जिनके पूर्वजों ने कुछ पीढ़ियों पूर्व उनकी व्यवस्था दी थी। अधिक दूर क्यों जाएं? आज से 60-70 वर्ष पूर्व ही हमारे देश में एक नहीं अनेक अर्जुन थे जो मूल्यों की रक्षा करने और उनकी पुनर्स्थापना के लिए तन मन धन से कटिबद्ध थे, और उनमें से अनेक ने इस प्रयत्न में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत न मालूम कौन सी हवा चली जिसने लोगों की मानसिकता एकदम बदल दी। जिस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हम युगों से संघर्ष कर रहे थे, वही गुलामी हमें पलक झपकते प्रिय लगने लगी। यद्यपि उसका परिधान राजनीति के स्थान पर आर्थिक हो गया, आर्थिक गुलामी की रक्षा के लिए हमने सांस्कृतिक गुलामी भी स्वीकार कर ली है, और इस गुलामी पर हम गर्व का अनुभव भी करने लगे हैं। इस गुलामी को दूर करने वाले की आवश्यकता तो बाद में पड़ेगी, पहले हमें ऐसे कृष्ण की आवश्यकता है जो हमें इस गुलामी के अभिशप्त पक्ष से अवगत कराए। समाज के टूटते हुए मूल्यों या मूल्यहीनता की विभत्सता से संबद्ध वे घटनाएं अनोखी सी लगती थी, वे ही आज हम अपने आसपास अत्यंत स्वाभाविक, वैज्ञानिक और सरल ढंग से घटित होती हुई देख सकते हैं।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा में लीजिए प्रस्तुत है सुदेश यादव से काव्य पाठ।
2: कविता की शुरुआत करते हैं माँ शारदे की वंदना से।

जा रहा है। और अब इसके बाद कुछ मुक्तक आपके सामने रखता हूं। पश्चिम का असर देखिए जाता ही नहीं है, पश्चिम का

दुनिया में यूं तो कृष्ण सुदामा भी हैं, मगर हक दोस्ती का अपनी निभाते नहीं हैं हम, हक दोस्ती का अपनी निभाते नहीं हैं हम। एक मुक्तक और देखें।

और अब एक गीत जो आज की पृष्ठभूमि पर है, जो आज के समाज के ऊपर है कि जमाना कितना बदल गया है, आपके सामने रखता हूं। आ रहा ऐसा जमाना

0: इष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणाम् एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगल वर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचंदः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीन फील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउन फील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए

0: लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज जानकारी का विषय है आंखों में होने वाले रोग, कारण और बचाव।
2: आंखों में हजारों रोग होते हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। जो जनरल होते हैं लोग, वो जब तक चेक नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आंखों में प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है। रेगुलर चेक कराने पर ही पता लगता है कि आंखों में क्या क्या बीमारियां होती हैं। और कुछ सामान्य बीमारियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है रिफ्रेक्टिव एरर, चश्मे का नंबर जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और धुंधलापन, अंधापन ये सब हो जाता है। और बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनमें आंख का भेंगापन भी हो जाता है। और कभी कभी अगर चेकअप नहीं कराते हैं आंख का तो ये लेजी आई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका ट्रीटमेंट 6 साल की एज के बाद नहीं हो पाता है। 6 साल की एज के बाद अगर चश्मे का नंबर आ रहा है और वो पहले से आ रहा है और 6 साल के बाद ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो एम्ब्लायोपिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसे लेजी आई बोलते हैं। उसमें विजन इम्प्रूव नहीं करती है, चश्मा लगाने के बाद भी उसमें नजर अच्छी नहीं आ पाती है। इसीलिए बच्चों का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बच्चों की आंख बहुत कोमल होती है तो उसमें जो उनका लेंस होता है बहुत कोमल होता है, और इसीलिए उनको मोबाइल से दूर रखना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप से दूर रखना चाहिए। इसकी वजह से भी आंख में ड्राइनेस और रिफ्रेक्टिव एरर आ जाते हैं, एस्टिगमेटिज्म आ जाता है जिसे सिलिंड्रिकल नंबर चश्मे का होता है। 6 साल तक की एज तक तो कम से कम बच्चे को मोबाइल हाथ में नहीं देना चाहिए 6 साल तक, क्योंकि बच्चे में आंख का डेवलपमेंट होता है, विजन का डेवलपमेंट होता है, तब तक मोबाइल बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आप मोबाइल यूज करा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तब भी नहीं। सबसे ज्यादा होने वाली एक मुख्य बीमारी सफेद मोतिया, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो होती है आमतौर पर 50 साल की एज के बाद होती है। ये 50% लोगों को होती ही है। इसको सेनाइल कैटरेक्ट भी बोलते हैं जो ओल्ड एज में आता है। बाकी मोतियाबिंद चोट लगने की वजह से भी हो सकता है और स्टीरोइड इंड्यूस्ड भी हो सकता है, स्टीरोइड मेडिसिन ज्यादा यूज करने की वजह से भी हो सकता है। सफेद मोतियाबिंद अगर हो गया है तो उसका सिर्फ एक ही बचाव है, सर्जरी। सर्जरी से ही उसमें फिर लेंस इम्प्लांट करके दूसरा लेंस डालते हैं, वो लेंस निकाल लेते हैं जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद की सबसे पहली पहचान ये है कि उनको धुंधला दिखने लगता है जिनको मोतियाबिंद होता है, और लाइट फैली फैली सी दिखाई देने लगती है और जैसे बादल से सामने आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये दृष्टि और कम होती जाती है। और धूप में निकलते हैं तो काफी चौंध लगती है, ये सामान्य लक्षण है। उपचार इसका यही है कि सही टाइम पे इसका ऑपरेशन करा लें। अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो ये बढ़ता रहेगा। कुछ मेडिसिन आती हैं इसको मोतियाबिंद बनने की स्पीड को कम करने की। खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी दवा से मोतियाबिंद को, इसका अल्टीमेटली ऑपरेशन ही किया जाता है। किसी में बहुत जल्दी तेजी से बनता है, किसी में अगर मोतियाबिंद बहुत स्लो हो रहा है तो उनमें पता नहीं चलेगा कि उनको मोतियाबिंद है, तो वो बहुत टाइम तक 4 साल तक 5 साल तक भी चलता रहता है। किसी को 6 महीने में भी बहुत ज्यादा मोतियाबिंद हो जाता है। तो टाइम टाइम पे चेकअप कराना बहुत जरूरी है, जिससे डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपकी आंख में कितना मोतियाबिंद है और कब ऑपरेशन कराना सही रहेगा। काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा भी बोलते हैं और इसको नजर का चोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये नजर को इस तरह खत्म करता है कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके कोई शुरुआती कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। अंधापन इसमें हो जाता है तब पता लगता है कि साइट की विजन बहुत कम होती जा रही है। और ये जो काला मोतिया होता है ये आंख के प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, आंख में जो लिक्विड होता है उसके प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है। जब प्रेशर आंख में बढ़ता है तो पीछे एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं, जिसमें इमेज बनती है और जो ब्रेन तक पहुंचाती है। अगर किसी को काला मोतिया, किसी के घर में किसी के पेरेंट्स को काला मोतिया है, तो जरूरी है कि वो अपने बच्चों में चेकअप कराएं काले मोतिया का। और क्योंकि ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है और वैसे भी हो सकता है सामान्य तौर पर भी, चोट लगने की वजह से भी हो जाता है काला मोतिया। अगर काला मोतिया निकल रहा है तो उसकी दवा चलती है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए दवा चलती है और उसको दवाई से रोका जा सकता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं सही टाइम पे तो वो हमेशा के लिए अंधे भी हो जाते हैं, हम भी कोई इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत लेट आए हैं हमारे पास।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, विषय था आंखों में होने वाले रोग, कारण और बचाव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है पशुओं में थनेला रोग व रोकथाम।
3: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है पशुओं में थनेला रोग व रोकथाम। किसान भाइयों हम सब खेती तो करते ही हैं और साथ ही साथ भैया हम पशुपालन का काम भी करते हैं, और हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि भैया जिस तरह से हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए उसी प्रकार भैया हमें अपने पशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसान भाइयों के लिए गाय और भैंस का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ पशु ही अच्छी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण दूध देता है। पशुओं में होने वाली प्रमुख समस्याओं में थनेला रोग यानी कि मास्टाइटिस बहुत महत्वपूर्ण है। यह बीमारी मुख्य रूप से दुधारू पशुओं के थन और दुग्ध ग्रंथियों में सूजन तथा संक्रमण के कारण होती है। थनेला होने पर दूध की मात्रा कम हो सकती है, दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है और गंभीर स्थिति में पशु के थन का स्थायी नुकसान भी हो सकता है। इससे किसानों को दूध उत्पादन में कमी के साथ साथ दवा और पशु चिकित्सा पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसीलिए थनेला रोग का इलाज करने से ज्यादा जरूरी है कि किसान भाई इसकी रोकथाम पर ध्यान दें। किसान भाइयों थनेला रोग को सामान्य भाषा में थन की सूजन या दूध की थैली का संक्रमण भी कहा जाता है। यह रोग कई प्रकार के जीवाणुओं के कारण हो सकता है। कुछ जीवाणु पशु के वातावरण से थन में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु तक दूध निकालने के दौरान फैल सकता है। साथ ही गंदा फर्श, गोबर, कीचड़, गंदे हाथ, गंदे कपड़े, दूषित पानी और दूध निकालने के गंदे उपकरण इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किसान भाइयों थन के सिरे पर छोटे से छेद से जीवाणु अंदर प्रवेश करते हैं और दुग्ध ग्रंथि में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। किसान भाई थनेला रोग की रोकथाम की शुरुआत पशुशाला की साफ सफाई से करें। जिस जगह पशु बैठता है वह साफ और सूखी होनी चाहिए। गोबर और मूत्र को लंबे समय तक जमा ना होने दें। फर्श पर कीचड़ या गंदा पानी जमा होने से बचाएं। यदि पशु गीली और गंदी जगह पर बार बार बैठता है तो उसके थन और थन के सिरे पर गंदगी चिपक जाती है और दूध निकालते समय जीवाणु आसानी से थन के अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए पशुशाला में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें और बैठने की जगह को हमेशा सूखा रखें। दूध निकालने की प्रक्रिया थनैला रोग की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

0: भाई दूध निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें। हाथों में गोबर, मिट्टी या अन्य गंदगी लगी होने पर सीधे दूध ना निकालें। यदि संभव हो तो दूध निकालने से पहले हाथों को साबुन और साफ पानी से धोकर सुखाएं। नाखूनों को छोटा और साफ रखें। हाथों की सफाई केवल दूध की गुणवत्ता के लिए ही नहीं बल्कि पशु के थन को संक्रमण से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, दूध निकालने से पहले थन को साफ पानी से धोने के बाद साफ कपड़े से अच्छी तरह सुखाना चाहिए। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि थन को धोने के बाद गीला ना छोड़ें। नमी और गंदगी जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है। प्रत्येक पशु के थन को साफ करने के लिए अलग साफ कपड़े का उपयोग करना अधिक सुरक्षित रहता है। एक ही गंदे कपड़े से कई पशुओं के थन साफ करने से संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंच जाता है। किसान भाइयों, एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि दूध की पहली कुछ धार सीधे दूध की बाल्टी में निकालने के बजाय किसी अलग साफ पात्र या स्ट्रिप कप में निकालकर देखना उपयोगी होता है। इससे दूध में गांठ, फटाव, पानी जैसा दूध, खून, पीला पदार्थ या अन्य असमानता का पता लग सकता है। सामान्य दूध की तुलना में दूध का रंग, गाढ़ापन या बनावट बदली हुई दिखाई दे तो पशु को ध्यान से देखना चाहिए। साथ ही भैया, कुशल पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में थनैलय की पहचान होने पर उपचार आसानी से किया जा सकता है। थन में चोट लगना भी थनैलय रोग का एक कारण बन सकता है। थनैला रोग की रोकथाम के लिए कोई एक उपाय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए साफ सफाई, साफ थन, साफ हाथ, साफ बर्तन और पशुशाला का नियमित साफ होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। अब हमें कल तक के लिए अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकारी। विषय था पशुओं में थनेला रोग व रोकथाम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति। ये कार्यक्रम हम रात्रि 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम शेरे निशिस्त। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा सनवर अली खां की गायी गजलें। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा डॉक्टर चंद्रभानु, प्रधान वैज्ञानिक जैविक कृषि प्रणाली विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेरठ से प्रमोद सिंह की बातचीत। विषय होगा बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक लव स्टोरी और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शाम 5 बजे किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ई नाम योजना पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक के गाए कुछ गीत। लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर सुनिएगा कृपा निधान सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम में 1:15 पर क्रम होगा आधी आबादी से साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सखी। मिड डे मेलेडी कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर। चित्रपट संगीत सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 11:30 पर। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुबह 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने को है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारम्भ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में खेल संस्कृति में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने खेलों के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया है। हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिलों में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित

0: जल्द ही नई युवा नीति लाएगी और हर जिले में रोजगार जोन विकसित किए जाएंगे। श्री योगी ने निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया।
1: ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। खेल इको सिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया, निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई, धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप एक सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के 8 चेहरे शामिल किए गए हैं। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को महासचिव और गोरखपुर से संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा।
0: नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
3: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार

0: अनुदान डीबीटी के माध्यम से देगी।
1: सहारनपुर में कल से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से प्रदेश भर के पीआरडी जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ करेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवान सम्मेलन में मुख्यमंत्री 3,000 रूपए वर्दी भत्ता की धनराशि पीआरडी जवानों के बैंक खाते में भेजेंगे। इसके साथ ही पीआरडी स्वयं सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित कर मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान श्री योगी लखनऊ में बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी करेंगे। नागपंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास के 3रे सोमवार और नागपंचमी पर

0: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश जिलों में आज भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात है। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पार्टी के नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नई सुबह नई किरण नई उम्मीदों का साथ। नई सुबह नई किरण नई उम्मीदों का साथ। सूरज की पहली किरणें लेकर आई है नई बात। खुशियों से भर जाए आपका आज का हर पल श्रोताओं। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सुबह का सफर हमारे अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के साथ। और श्रोताओं, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी साथी ज्योति गौड़ और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। तो आइए श्रोताओं, सुबह की इन सुनहरी किरणों के साथ अपने दिन की एक खूबसूरत शुरुआत करें। मन में उम्मीद रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें और दिल में अपनों के लिए प्यार रखें। कहते हैं ना, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, तो क्यों ना आज की सुबह को कुछ खास बनाया जाए। और इन्हीं बातों के साथ अब शुरू करते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है सूरज के साथ साथ। और सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में आज

0: सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज हम मना रहे हैं पुण्यतिथि। श्रोताओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे बोस एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की और बाद में भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके जुनून ने उन्हें ICS की आकांक्षाओं को त्यागने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बोस INC में तेजी से आगे बढ़े और अपने क्रांतिकारी विचारों और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत के लिए जाने गए, जो कुछ अन्य नेताओं द्वारा अपनाए गए अधिक उदारवादी दृष्टिकोण के विपरीत था। उन्हें 1938 और 1939 में INC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के अहिंसक दृष्टिकोण और मतभेदों के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। बोस का भारत की स्वतंत्रता के लिए दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करना था। वे 1941 में भारत में नजरबंदी से भाग निकले और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने अल्डाफ हिटलर से समर्थन मांगा। 1943 में वे जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की कमान संभाली, जिसका गठन भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया था। बोस के नेतृत्व में INA ने भारत के उत्तर पूर्वी भाग और बर्मा में अंग्रेजों के विरुद्ध जापानी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। यद्यपि INA अंततः असफल रही और जापान की पराजय के बाद भंग कर दी गई, फिर भी बोस के प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी वीरता और समर्पण ने अनेक लोगों को प्रेरित किया। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में बोस की रहस्यमय मृत्यु अटकलों और विवादों का विषय रही है। विभिन्न जांचों के बावजूद उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां अभी भी अनसुलझी हैं। श्रोताओं, बोस को भारत में एक नायक के रूप में याद किया जाता है। उनके सम्मान में अनेक संस्थानों, स्मारकों और पुरस्कारों का नाम रखा गया है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत आज भी कायम है। सुभाष चंद्र बोस को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको जानकारी देते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निस्तारण कैसे करें। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान से जुड़ी एक बेहद जरूरी जानकारी की। जी हाँ, तिरंगा हमारे राष्ट्र गौरव और देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है, इसलिए जिस तरह तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ फहराना हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह उसके पुराने क्षतिग्रस्त या उपयोग के योग्य न रहने पर उसका सम्मान पूर्वक निस्तारण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार यदि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फट गया है, गंदा हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे कूड़े में या सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि ऐसे तिरंगे को निजी रूप से और पूरी गरिमा के साथ नष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए आधिकारिक दिशा निर्देश में प्राथमिकता से जलाने या दफन करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। आजकल राष्ट्रीय पर्वों और विभिन्न आयोजनों में कागज के छोटे छोटे तिरंगे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन्हें सड़क, मैदान या कूड़ेदान में फेंकना उचित नहीं है। श्रोताओं, इन्हें भी निजी रूप से और सम्मान पूर्वक निस्तारित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने भी इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। श्रोताओं, यदि ध्वज प्लास्टिक का है तो उसे खुले में न जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। प्लास्टिक के झंडों को पूरी गोपनीयता और गरिमा के साथ सुरक्षित तरीके से दफनाना बेहतर होता है। और श्रोताओं, नष्ट करने से पहले झंडे को कायदे से साफ और फोल्ड किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको नष्ट करना चाहिए। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते समय उसकी गरिमा का पूरा ध्यान रखेंगे और उपयोग करने के बाद उसे कभी जमीन पर या कूड़े में हमें नहीं फेंकना है।

कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आइए आपको जानकारी दे दें 18 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं की। 18 अगस्त को वैसे तो देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं घटी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 18 अगस्त सन 1800 में लॉर्ड वेलिजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 18 अगस्त 1951 को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। 18 अगस्त 1982 को सोवियत संघ द्वारा एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 के लिए भेजी गई। और 18 अगस्त सन 2000 को इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर दो दिन में टेस्ट मैच जीतने का इतिहास रचा। 18 अगस्त 2008 को उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। और 18 अगस्त 1868 में आज ही की तारीख को फ्रांसीसी खगोल शास्त्री पियरे जेनसेन ने सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करते हुए एक ऐसी वर्णक्रमीय रेखा दर्ज की जो किसी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाती थी। यह बाद में नए तत्व हीलियम की खोज का पहला प्रमाण साबित हुआ। और आइए बात करते हैं 18 अगस्त को किन महान लोगों ने जन्म लिया। 18 अगस्त 1985 को जन्म हुआ था भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीतिका जाखड़ का। इन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 63 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। और 18 अगस्त 1959 को जन्म हुआ भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। सितंबर 2017 से मई 2019 तक वे रक्षा मंत्री थीं, और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्तीय व कॉरपोरेट मामलों की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वो राष्ट्रीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और आज ही की तारीख यानी 18 अगस्त को जन्म हुआ विजयलक्ष्मी पंडित का सन 1900 में। आपका जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनका मूल नाम स्वरूप कुमारी नेहरू था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और जेल भी गई। 1937 में वे संयुक्त प्रांत की प्रांतीय सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका सोवियत संघ सहित कई देशों में आपने काम किया। 1953 में वह सरा महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वो महाराष्ट्र की राज्यपाल रही और 1964 में लोकसभा के लिए चुनी गई। 1 दिसंबर सन 1990 में आपका निधन हो गया। और आज ही की तारीख यानी 18 अगस्त को जन्म हुआ था महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेत्रहीन संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का सन 1872 को। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोगों ने इस संसार को आज ही की तारीख को अलविदा कह दिया। 18 अगस्त 1990 को हिंदी के साहित्यकार तथा

0: सरस्वती पत्रिका के संपादक नारायण चतुर्वेदी इस संसार को अलविदा कह गए। 18 अगस्त 2018 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव कोफी अन्नान भी इस संसार को अलविदा कह गए।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: और श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस शख्सियत की जिसके शब्दों में भावनाओं की गहराई है, जिनकी शायरी में जिंदगी के रंग हैं और जिनके गीत दिल को छू लेने वाली कहानियां बयां करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार, कवि, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार साहब की। गुलजार साहब आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और श्रोताओं, गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1934 को झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। साहित्य और सिनेमा की दुनिया में उन्होंने गुलजार नाम से अपनी अलग पहचान बनाई। गुलजार साहब की खासियत यह है कि वे साधारण शब्दों में भी असाधारण भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। उनके लिखे गीतों में प्रेम है, विरह है, रिश्तों की मिठास है, प्रकृति है और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत नजरिया भी है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार गीत दिए। उनके गीतों ने कई पीढ़ियों के लोगों के दिलों में जगह बनाई। चाहे प्रेम की बात हो, अकेलेपन का एहसास हो या जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, गुलजार साहब के शब्द हर भावना को बहुत ही खूबसूरती से आवाज देते हैं। गीतकार के साथ साथ गुलजार साहब एक सफल फिल्म निर्देशक और लेखक भी रहे हैं। उनकी रचनात्मकता का दायरा कविता, कहानी, पटकथा और फिल्म निर्देशन तक फैला हुआ है। उनके निर्देशन में बनी फिल्में मेरे अपने, परिचय, खुशबू, मौसम, अंगूर, मासूम, इजाजत और माचिस काफी हिट रहीं। उनकी साहित्यिक और सिनेमाई प्रतिभा को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनके गीतों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और फिल्म स्लिम डॉग मिलेनियर के गीत के लिए उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया। उनके लिखे सुपरहिट गीतों में इजाजत फिल्म का गीत मेरा कुछ सामान या मासूम फिल्म का गीत तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी से फिल्म आंधी का गीत, मुसाफिर हूँ यारो फिल्म परिचय, दिल ढूंढता है फिल्म मौसम, नाम गुम जाएगा किनारा ओ माझी रे फिल्म खुशबू, आने वाला पल जाने वाला है गोलमाल काफी हिट रहे। श्रोताओं, गुलजार साहब के शब्दों की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि वे केवल गीत नहीं लिखते बल्कि भावनाओं को शब्द देते हैं। उनके गीत सुनते हुए लगता है जैसे कोई हमारी कहानी, हमारी अपनी यादों और हमारे अपने एहसासों को शब्द में कह रहा हो। तो आइए श्रोताओं, गुलजार साहब की कलम को सलाम करते हुए अब सुनते हैं उनका लिखा ये खूबसूरत सा गीत फिल्म परिचय से।

गीत के बाद श्रोताओं आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जहां हम आपको अवगत कराते हैं अखबार की चंद सुर्खियों से। शुरुआत कर रहे हैं अमर उजाला के साथ, तो अमर उजाला लिखता है 899 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। सहारनपुर सेना में भर्ती होकर मां भारती की सेवा करने का जज्बा लेकर अग्निवीर भर्ती रैली में हापुड़ के युवाओं ने खूब दम दिखाया। अग्निवीर बनने के लिए 899 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें 600 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इन सभी का मेडिकल आदि अन्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। अमर उजाला की एक और सुर्खी है मुसीबतों की बाढ़, उफनती गंगा और नाव का सहारा। मंडावर में बारिश का मौसम, उफनती हुई गंगा और ऐसे में केवल नाव का सहारा। गंगा तट पर बसे राजा रामपुर, डेबलगढ़, चाहड़वाला समेत दर्जन भर गांवों के हजारों किसानों और मजदूरों को लगभग हर रोज इस परिस्थिति से दो चार होना पड़ता है। ये लोग जान जोखिम में डालकर अपने मवेशियों के चारे की व्यवस्था करते हैं। सुबह नाव से गंगा की उफनती नहरों का सामना करते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और शाम को चारा लेकर घर लौट आते हैं। जब तक घर लौटते नहीं है, तब तक घर पर मौजूद इनके परिवार के सदस्यों की सांसें अटकी रहती हैं। रुक करें हिंदुस्तान की ओर, तो हिंदुस्तान लिखता है राशन कोटेदारों का कमीशन बढ़ा। राज्य सरकार ने यूपी के राशन कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम ने बटन दबाकर यूपी के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को उपहार दिया। उन्होंने कहा कि मार्जिन मनी में 35 रुपए की वृद्धि की है, इसमें 10 रुपए केंद्र और 25 रुपए सरकार दे रही है। हमने 25 रुपए और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, समय लगेगा लेकिन यह काम हो गया तो आपके लिए और भी अच्छा व्यवस्था होगी। हिंदुस्तान की एक और सुर्खी है एलपीजी की ई केवाईसी 23 अगस्त तक कराएं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब उपभोक्ता 23 अगस्त तक ई केवाईसी करा सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने ऐप में आ रही खराबी और सर्वर डाउन होने की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया है। रुक करें दैनिक जागरण की ओर, तो दैनिक जागरण लिखता है दिन भर गर्मी और उमस के बाद बरसा पानी, राहत। बिजनौर में सावन में सोमवार को बादलों ने फिर से पानी बरसाया। दिन भर की गर्मी और उमस

0: के बाद शाम को बरसात और हवा के झोंकों ने मौसम सुहावना कर दिया। लगातार बरसात से किसानों को राहत मिल रही है। लगभग 1.5 माह से नलकूपों व पंपिंग सेट का संचालन पूरी तरह बंद है। बरसात के पानी से ही फसलों की सिंचाई हो रही है। और दैनिक जागरण की एक और सुर्खी है, खेत में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग। नजीबाबाद के ग्राम अलीपुरा में लगातार गुलदार के दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में नगर पालिका परिषद नजीबाद के चेयरमैन को सूचना दी, जिसके बाद वे सामाजिक विनयकी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार।
1: सूरज के साथ साथ
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
5: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
4: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
7: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
4: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
8: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनासीमा

0: जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने JSSC CGL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। JPSC JSSC न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की CBI जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही JSSC CGL इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल

0: में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाल नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म धनवान से।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म धनवान से। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। और श्रोताओं, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता है ना, बल्कि दिल की उन भावनाओं को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में कह नहीं पाते। कुछ निगाहों में ऐसी कशिश होती है कि सामने आते ही दुनिया की सारी हलचल थम जाती है, और ये गीत भी कुछ इसी तरह का था। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन खूबसूरत एहसासों को अपने सुर में पिरोता ये गीत अभी आपने सुना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद मुमकिन नहीं। जी हाँ, सच्चा प्यार वही है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाए और हर मौसम में अपनेपन का एहसास कराता रहे। इसी खूबसूरत चाहत को आवाज देता है ये गीत, जिसमें छिपी है साथ निभाने की एक प्यारी सी ख्वाहिश कि मोहब्बत की उम्र लंबी हो, रिश्ते में अपनापन बना रहे और प्यार का ये सफर यूं ही चलता रहे। तो आइए सुनते हैं मोहब्बत और समर्पण से सजा ये खूबसूरत सा नगमा जो हमने लिया है फिल्म वारिस से।

उत्तम जगदीश के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की युगल आवाजों में फिल्म का नाम था वारिस।

0: चंदन का एहसास।
1: श्रोताओं, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर इंसान अपने लिए एक रास्ता चुनता है। कभी राह आसान होती है तो कभी मुश्किलें कदम रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब मंजिल पर भरोसा और दिल में हौसला हो तो इंसान हर रास्ते को पार कर लेता है। जिस पथ पे चला श्रोताओं, ऐसे गीत हमें यही एहसास कराते हैं कि जीवन की राह पर बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपने सफर को पूरे विश्वास के साथ जीना चाहिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं उम्मीद, विश्वास और जीवन के खूबसूरत सफर का एहसास कराता हुआ ये कार्यक्रम का अगला गीत।

यादगार फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और गीत लिखा था इंदिवर ने। श्रोताओं, मोहब्बत का एहसास जब दिल में उतरता है तो हर पल कुछ खास लगने लगता है। किसी की मुस्कान खुशी दे जाती है, उसकी याद चेहरे पर मुस्कान ले आती है और दिल बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। ऐसा होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी खूबसूरत दीवानगी को अपने शब्दों और सुरों में बयां करता ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें प्यार की मस्ती, दिल की बेकरारी से सजा ये गीत आपको और भी अपने सुरों के साथ बहा ले जाएगा। कुछ पल के लिए बाकी सारी बातें भूलकर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। और श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

इसी के साथ धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे विविध कलाकारों के गाये रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे।

0: कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया आपने ये गीत सुना फिल्म बरसात से। संगीत नदीम श्रवण का था और गीत लिखा था समीर ने। सुनने की फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। ये पत्र हमें मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सभी सदस्यों का, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम जुजला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशा, तायशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। जिला झारखंड बड़ा बम्बो सुपाई साई गांव से ये पत्र हमें भेजा था देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी ने।
1: ज्योति महादेव घाट अमलेश्वर से भी हमें मैसेज ये पत्र मिला है और ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। साथ ही हैं भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान। साथ ही हैं सिंधौली मीरगंज बरेली से हमारे श्रोता जीशान वारसी। इसी गीत को सुनना चाहा था महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल ने।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने लिया है फिल्म गोपी किशन से। आवाजें हैं कुमार शानू और पूर्णिमा की। गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से ये पत्र हमें भेजा है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, सास दरानी और जोया रानी ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, खान और असलम सैफी। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबीर, राधिका और बेबी अनिष्का और तन्मय ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत।
1: ये हमारे श्रोता लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। इसी के साथ ये पत्र हमें मिला है इंदिरा बिहार रायगढ़ से और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं वसीब अकरम नूरजहां, डब्ल्यू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और अल्लाह अकरम नूरजहां।
0: तो श्रोताओं लीजिए आप पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानकी कसम से। आवाजें हैं अनुराधा पौड़वाल और कुमार शानू की, संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। छत्रपति संभाजी नगर से हमें ये मैसेज किया है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़ाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसूल कमर राही ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से वीपी रंजू, विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी भी इसी गीत के लिए सुनने की फरमाइश हमें करते हैं।
2: ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, जुनैद मुजावर, सबीहा, नाजियान शीर, साजिद शाहिद और ये गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं, जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। ये हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अपरवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। ये हैं हमारे श्रोता नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहवारकर, निर्मला नहवारकर, विशाल नहवारकर और मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायले और आशीष मुहेरकर।
1: तो श्रोताओं, पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म जान की कसम से।

0: जानकी कसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौड़वाल और कुमार शानू की युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और पंकज उधास की आवाजों में फिल्म लुटेरे से। इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है मनोज कुमार ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सत्यदेव राणा इस्लामनगर पसबारा जिला बदायूं से, और ये मैसेज हमें मिला है हरदेव मिक्का बलविंदर विरक जयतिंग विरक और मिक्का विरक का, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: ये हमारे श्रोता हैं मगनपुर झारखंड से, अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज
1: ये है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव फरांसी जिला हिसार से हैं हमारे श्रोता राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने। साथ ही हैं छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। यह है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान।
0: और श्रोताओं

इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज जो हमारे पास आया है, हमें भेजा है नाज मंजिल महसौल सीतामणि से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और पंकज उदास का गाया फिल्म लुटेरे का ये गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम गदरौना से मदनगिरी, विमलागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, सोनियागिरी, गोविंदगिरी और सिमरनगिरी ने, इन्हीं के साथ में है वंशिकागिरी, रमनगिरी और दिव्यागिरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं

0: फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता चौरसिया, सुजाता चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू लाला चौरसिया, पिंकी पूजा पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।
1: इसी गीत के लिए पत्र के माध्यम से हमें फरमाइश भेज रहे हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से, जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। ये हैं हमारे श्रोता गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी और तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम, बेबी बमिका और वाणी थांदी।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती जानवी वैष्णवी और हर्षल ने। इसी गीत के लिए हमें मैसेज किया है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने।
1: श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। ये है हमारे श्रोता शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। ये है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत और चेतन नाहटा। ये मैसेज हमें भेजा है एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम ने गुमला झारखंड से।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। तो श्रोताओं आप सभी ने फरमाइश की है अलका याग्निक और कुमार शानू के गाए इस गीत की, जिसको हमने लिया है फिल्म विजयपथ से। संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है जमीर काजमी ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म विजयपथ से ये गीत, और इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जीवन मृत्यु का ये गीत, जिसको आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से ये गीत सुनना चाहा है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना ने। और ये गीत सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से साहिबा खातून, अरमान महबूब, नूरजहां खातून, साजिया परवीन, नाजिश जहां, फूल जहां और केफू वरा ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं
1: ये हमारे श्रोता हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। ये हैं हमारे श्रोता कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अलकबीर। ये हैं हमारे श्रोता जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। कमल कॉलोनी बड़वाह से जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं हमारे श्रोता प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमें ये मैसेज भेजा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। साथ ही शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये मैसेज हमें भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: बीर शहर महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें किया है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुथले ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोहडंडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटियांजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन और रामानंद कश्यप। इसी गीत को हमें सुनने के लिए मैसेज किया है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुषमा देवी ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, नरगिस खातून और मोहम्मद इसरार ने। तो श्रोताओं लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जीवन मृत्यु। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि पत्र के माध्यम से हम तक पहुंची है। हमारे श्रोताओं ने हमें ये पत्र भेजा है सरगुजा मैनपाट से, सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा ने। साथ ही हैं बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्ल्यू डोम। और ये हैं जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह बेलदार। और इसी के साथ ये हमें मैसेज मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी का। ये है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन।
1: जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन प्रजापति, कमल प्रजापति, अरुण प्रजापति, कुश प्रजापति, किशन प्रजापति, वैष्णवी प्रजापति, हितांशी और उनके परिवार के सभी सदस्य भी यही गीत सुनना चाहते हैं। और ये हमें अगला मैसेज मिला है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, युषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुधामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगपात। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है कस्बा उगैथी बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार और कार्तिक, साथ में है निर्भय गुप्ता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। और ये मैसेज हमारे पास आया है जिला जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है वाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक ने। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मिस्टर एंड मिसिस खिलाड़ी का ये गीत जिसे आवाजें दी हैं अनु मलिक, अनुराधा पौड़वाल और साथियों ने। संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है देव कोहली ने।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत तुम्हारे समाप्त करने की ज्योति गौड़
1: और अनुपम को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन की 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम था कालीचरण। शब्द रचना इंद्रजीत की थी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम में पेश है अगला गीत। आवाज है मुकेश की, फिल्म का नाम है ठोकर। गीत के बोल लिखे हैं सजन देहलवी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है श्याम जी घनश्याम जी ने।

जी हाँ श्रोताओं, जो खो जाते हैं वो कभी दोबारा नहीं मिलते। ये गीत मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ठोकर, शब्द रचना सजन धेलवी की थी और संगीत था श्याम जी घनश्याम जी का। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म में थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा। गीत के बोल गुलजार ने लिखे हैं और संगीत दिया है खयाम ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, और श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश है फिल्म विधाता का ये गीत। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और अनवर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, फिल्म विधाता का ये गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और अनवर की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं यशोदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म में साजन बिना सुहागन का ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संतोष का ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं फिल्म दादा का ये गीत यसुदास की आवाज़ में। संगीत है उषा खन्ना का और शब्द रचना है कुलवंत जानी की।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है?
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओं, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी।
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी।
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी।

0: एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी,
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खान पान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे आईवीआर

0: और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
2: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
3: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
2: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
3: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
2: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
3: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
2: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं।
5: जी।
4: विरासत

0: में मिला आपको ये नृत्य? अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
1: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग हैं, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, और बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
0: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
1: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो क्षीण होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए, और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
0: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
1: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
0: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।

0: 17 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
1: पंडित बिरजू महाराज। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
2: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
3: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
2: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
1: भगत सिंह।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में

0: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
0: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
0: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।

0: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी।

श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी आगरा की होगी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही सुनिएगा शाम 6:50 पर

आयोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रात 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा शेर ए नशिस्त। इसका संचालन करेंगे मैराज बिजनौरी। श्रोताओं, शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे सनवर अली खां की आवाज में चंद गजलें। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक विषय पर जैविक कृषि प्रणाली विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेरठ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रभानु से प्रमोद सिंह की बातचीत।

युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा संध्या 5:15। इसमें खास क्रम रहेंगे, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, लव स्टोरी और बूस्टर्स। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज के कलाकार होंगे गायक के। कार्यक्रम महिला जगत में दिन में 1:15 पर आज क्रम रहेगा हेलो सखी का, जिसमें बातचीत का विषय होगा स्वच्छता में जन भागीदारी। महिला श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9457078288 पर कॉल कर सकती हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे कृपा निधान सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का समय रहेगा दिन में 12:30 और अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर का ये गीत सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत था अनु मलिक का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है बाजार। गीत के बोल लिखे हैं मीर तकी मीर ने और धुन तैयार की है खयाम ने।

अभी आपने सुना फिल्म बाजार में लता मंगेशकर को, संगीत खयाम का था और गीत के बोल लिखे थे मीर तकी मीर ने। कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने से पहले

राधा पौडवाल, पंकज उधास और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बहार आने तक का ये गीत। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

बाहर आने तक। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाज़ों में। श्रोताओं, एक बार आपको फिर से याद दिला दें, आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में खास क्रम रहेगा हेलो सखी का। ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और जिसमें आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है स्वच्छता में जन भागीदारी। हमारी बहनें हमें कॉल कर सकती हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। ध्यान रहे, महिला जगत जो है वो महिला श्रोताओं का कार्यक्रम है, तो हमारी बहनें ही हमें कॉल करें। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर

कुमार केसर में फिल्म जमीर का ये नगमा। साहिर लुधियानवी ने इसको लिखा है और सपन चक्रवर्ती ने धुन तैयार की है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी।

प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co

फिर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। और श्रोताओं, आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में क्रम रहेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी का, जिसमें आपसे बातचीत का विषय होगा स्वच्छता में जन भागीदारी। तो कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहनें हमें कॉल कर सकती हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9457078288। चूँकि ये महिला श्रोताओं का कार्यक्रम है, इसलिए हमारी बहनें ही हमें कॉल करें। और चलिए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म अर्पण का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने फिल्म अर्पण का ये गीत सुना, लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म किसी से न कहना का ये गीत। गीत लिखा है योगेश ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में फिल्म किसी से न कहना का ये गीत। गीत लिखा था योगेश ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। और श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में हमारी महिला बहनें सुनेंगी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी, जिसमें बातचीत का विषय है स्वच्छता में भागीदारी। तो हमारी बहनें कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। तो समय याद रखिएगा, दिन में 1:15 और क्रम है हेलो सखी। और चूँकि ये कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित है तो हमारी बहनें ही हमें कॉल करें। और श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बेटा। गीत के बोल लिखे हैं।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं को, बहनों आप सभी का स्वागत है झमाझम बरसते बादलों के साथ आप ही के कार्यक्रम महिला जगत में। श्रोता बहनों, आप कुशलता से होंगी इस आशा के साथ आपको बता दें कि आज महीने का तीसरा मंगलवार है और बहनों इस दिन हमारी बहनों का कार्यक्रम होता है हेलो सखी। तो बहनों, ये हमारा फोनिंग कार्यक्रम है जिसमें आपसे हम बातें करते हैं। तो आज अपनी श्रोताओं से हेलो सखी में हम बात करेंगे स्वच्छता में जन भागीदारी विषय पर। तो बहनों, आप हमें कॉल करें इस नंबर पर, हमारा नंबर है 9457078288। तो बहनों, थोड़ी ही देर में आपकी कॉल को रिसीव करेंगे कार्यक्रम हेलो सखी में। पहले बात करते हैं एक ऐसी प्रेरणाप्रद कहानी की जो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। श्रोता बहनों, डाउन सिंड्रोम, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे आम बच्चों से अलग होते हैं। ये वो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनका विकास अपेक्षाकृत कम होता है शारीरिक या मानसिक रूप से। माता पिता के 46 क्रोमोसोम्स मिलकर एक सामान्य बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार ये क्रोमोसोम्स जब 47 हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का अपने जीवन में सामान्य गतिविधियों को निभाना। लेकिन अगर माता पिता में इच्छा शक्ति हो और वो अपने बच्चे को उसकी रुचि को जानकर प्रेरित करते हैं तो ऐसे बच्चे कई कमियों के बावजूद नॉर्मल जीवन भी जीने में बहनों सक्षम होते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भी वो बनते हैं। इसका उदाहरण है हमारी आज की आधी आबादी की प्रेरणा, मुंबई महाराष्ट्र की अदिति वर्मा। तो चलिए और जानकारी आपसे साझा करते हैं हमारे क्रम आधी आबादी से में। अदिति, ये नाम है श्रोताओं उस बेटी का जो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी या कमी के साथ पैदा हुई। लेकिन बावजूद सामान्य बच्चों से अलग होने के कारण भी अदिति के माता पिता ने उसकी परवरिश ऐसे की, अदिति स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद आज अपना अदिति कॉर्नर नाम से एक कैफे चलाती है। आत्मनिर्भर और सामान्य जिंदगी वो जी रही हैं। जब बच्चा जन्म ले और उसके बाद किसी भी माता पिता को जब ये मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार अक्सर माता पिता हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन श्रोताओं, अदिति के माता पिता ने अपने बच्चे को इस तरह से पाला, उसकी हॉबी को जानकर उसी ओर प्रेरित किया और सामान्य बच्चों की तरह उसे समाज में जीना सिखाया।
1: हेलो, मेरा नाम अदिति वर्मा है। मैं खागर में रहती हूँ। बेरापुर में एक छोटा दुकान है अदिति कॉर्नर।
0: अदिति के माता पिता की प्रेरणा से अदिति ने खुद के भीतर आत्मविश्वास पैदा किया और कुकिंग को अपना शौक बनाया। माता पिता ने उनकी इस हॉबी को जाना। आज मुंबई में रहने वाली अदिति के अदिति कैफे में लोग आते हैं और अदिति एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना कैफे चला रही हैं। अदिति ने जब जन्म लिया तो माता पिता को कैसे पता चला कि उनकी बेटी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, उनकी माँ इस बारे में बताती हैं।
2: अदिति का जन्म 2 जुलाई 1994 को हुआ था। जब हुई तो बहुत छोटी थी, वेट बराबर था।

0: लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पैरों से कमज़ोर दिखती थी, पैर पलट जाते थे। हमको समझा नहीं, हम सोचे आज का बच्चा है, शायद तेज़ी से पलट रहा है। फिर जैसे ये बड़ी हुई, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें रिएक्शन देखना समझ में आया हमें। जो बच्चे 5 या 6 महीने में बैठने लगते थे, ये उसने 10 महीने के बाद शुरू किया। कोशिश यही रही कि हम इसको एज नॉर्मल एज पालें, जितना हो सके हम इसे नॉर्मल। मेरे 2 बच्चे हैं, एक अदिति, ये बड़ी है, एक बेटा है, 3.5 साल छोटा है, मगर हमने इन दोनों में कोई भी हमने इनमें अंतर नहीं माना, क्योंकि हमें इसे अपने पैरों पे खड़ा करना था। समाज से कि कब तक हम डिपेंडेंट बना के रख सकते थे, मन में डिसाइड किया हमने और हमारे हस्बैंड ने, इसको हमें इंडिपेंडेंट बनाना है।
1: समाज में अक्सर ऐसे स्पेशल बच्चों को लोग कभी कभी अपने शब्दों से तो कभी अपने व्यवहार से, यहाँ तक कि कभी कभी सिर्फ अपनी नजरों से भी बहुत आहत कर देते हैं, भेदभाव करते हैं। अदिति के माता पिता ने ऐसी स्थिति में कैसे खुद को और अदिति को संभाला, कैसा व्यवहार समाज के द्वारा मिलता था, उन्हें कैसा लगता था, अपना अनुभव वो साझा करती हैं।
0: बहुत ज़्यादा सफ़र किया उस समय, जब ये थोड़ा सा बड़ी हुई। नेचुरली चाहती थी खेलना, पर कोई भी, क्योंकि इसके साथ स्लो थी, दौड़ नहीं पाती थी, बच्चे खेलना नहीं चाहते थे, बच्चे इसको अवॉइड करते थे, पेरेंट्स भी अवॉइड करते थे अपने बच्चों के साथ खेलना। एंड फिर बोलते थे, अरे इसको क्या है, ये ऐसी क्यों है, ये आपकी नॉर्मल नहीं है, ये पागल है क्या, बहुत तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बोले। बहुत ज़्यादा दिल दुखता था, मगर कभी भी हमने अदिति के सामने एहसास नहीं होने दिया कि हम इस चीज़ को लेके परेशान हैं। वो खेलती नहीं थी तो हम खुद बच्चा बन के उसके साथ खेलना शुरू कर देते थे कि चला जाओ हम ये खेलते हैं।
2: जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्डिंग के नीचे अंचारी थी खेलने के लिए, जो बच्चे जो आते हैं मिलते हैं मुझ पर हंसते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, तो मैं रोते रोते मैं ऊपर गिर गई घर पे। मैं रोते रोते मम्मी को बोली, मम्मी मुझे बताओ कि बच्चे मुझे पर क्यों मजाक उड़ाते हैं। तो मम्मी ध्यान मान दो, ध्यान मान दो, बस अपना काम करते हो।
0: आज भी हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अरे ये क्या है, अरे ये लड़की को ऐसा है वो है, लेकिन हम इसीलिए सबको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, इनको अलग ना समझ के समाज का एक हिस्सा बनाएंगे तो हम जानते हैं कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे।
1: अदिति अपनी माँ के साथ किचन में हाथ बटाती थी, उन्हें कुकिंग का शौक था और इस प्रतिभा को उनके माता पिता ने पहचाना और उनके लिए उन्होंने कैफे खोला।
2: और मुझे शौक है खाना बनाना, वो खाना बनाना यूट्यूब से देखती हूँ, यूट्यूब में हर तरह खाना आता है, वेज है नॉन वेज है, वो सब बनाती हूँ और सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो ऑफिस जो लोग ही खाते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं।
1: कुकिंग एक्सपर्ट विकास खन्ना की अदिति बहुत बड़ी फैन है और खुद विकास खन्ना अदिति के कैफे पर आए और अदिति से वो मिल चुके हैं। श्रोताओं, आज अदिति अपने कैफे पर खुद केक बेक कर लेती हैं, कैफे को संभालना, सामान की लिस्ट तैयार करना, पैसे का हिसाब किताब करना सब अदिति स्वयं करती हैं। आज ये एक मिरेकल सा लगता है जब किसी असामान्य बच्चे को कोई भी एक कैफे चलाते हुए देखता है। श्रोताओं, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां होती हैं, किसी में शारीरिक तो किसी में मानसिक ताकत कम होती है, पर बस जरूरत होती है बच्चे की कमजोरी के बजाय उसकी ताकत को पहचानना। ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ ना कुछ देकर भेजा होता है, बस अपने बच्चे के हाथों की मुट्ठियों को खोल कर देखिए कि वो अपने साथ क्या क्या हुनर और ताकत लेकर आया है। जैसे अदिति की माता पिता ने उनके हुनर को जाना, अदिति और उसके माता पिता की ये कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है कि अगर रिश्तों और जिंदगी की खूबसूरती को पहचाना जाए तो कोई मुश्किल खड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो डाउन सिंड्रोम जैसी कमी ही क्यों ना हो।
2: मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो आप लोग काम कर रहे, बच्चे को जो बाहर निकाल रही है और वो जो काम करना चाहते हैं वो प्लीज करने दीजिए, वो सारे बच्चे को जो घर में प्लीज बाहर निकाल रही है, प्लीज जो बच्चों को धक्का मत दीजिए, काम करो वो काम करो, डोंट फोर्स हर, वो जो कर रहे बच्चे वो काम करने दीजिए, वो जो बच्चे हैं हमारे आज की लाइफ से सीखना चाहिए। थैंक यू।

बहनों, आपने सुनी अदिति की कहानी कि वो एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होकर भी कैसे चुनौतियों का सामना कर एक कुकिंग एक्सपर्ट बन अपना खुद का कैफे चला रही हैं। समाज के लिए अदिति एक मिसाल हैं कि संघर्ष से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। और कार्यक्रम में बहनों, अब लेते हैं एक विराम, आपको सुनवाते हैं जरूरी संदेश।

0: हैंडल हर पल चंदन का एहसास।
1: कार्यक्रम में बहनों एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम हेलो सखी। श्रोता बहनों, इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है स्वच्छता में जन भागीदारी। बहनों, कहा जाता है कि महिलाओं की जन भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। कोई भी कार्य हो, जन भागीदारी से वो प्रभावी ढंग से धरातल पर दिखाई देता है और स्वच्छता, पर्यावरण, ये ऐसे विषय हैं जिनमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बहनों, आप भी अपने आसपास स्वच्छता के लिए क्या क्या करती हैं, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या क्या प्रयास आप अपने माध्यम से कर रही हैं। हमारा नंबर है 9457078288। तो बहनों, एक कॉल हम तक पहुंच रही है हमारी किसी श्रोता की, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो सखी।
2: हेलो,
1: हाँ जी, हेलो सखी।
2: आज पहली बार नंबर लगा, कभी आज तक भी नंबर नहीं लगा।
1: स्वागत है आपका। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बता रही बोल रही हैं?
2: मेरा नाम चंद्रकांता है
1: जी।
2: मैं काफी दिन से प्रोग्राम तो सुनती हूँ रेडियो के, लेकिन मैं कभी नंबर लगाती हूँ, लगता नहीं।
1: चलिए चंद्रकांता जी, आज तो आपका नंबर लग गया है हमारे हेलो सखी कार्यक्रम में। अच्छा चंद्रकांता जी, आज ना हम हेलो सखी कार्यक्रम में अपने श्रोताओं से बात कर रहे हैं साफ सफाई के बारे में, कि स्वच्छता में महिलाओं का क्या योगदान रहता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, हमारी श्रोताओं को आप बताएं कि आप अपने आसपास साफ सफाई के लिए क्या क्या करती हैं।
2: देखो जी, पहला काम तो रहने का सही साफ सफाई साथ में घर में बाहर पर होता है
1: जी।
2: और मेरी भी उम्र कम से कम भी 70 साल की है, मैं भी उसके पहले झाड़ू हाथ में ली।
1: हाँ जी,
2: हाँ जी, साफ सफाई करते हैं अपने घर की।
1: आप अपने आसपास कैसे देखते हैं कि स्वच्छता में लोग ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, कहीं आसपास कूड़ा कचरा यूं ही तो नहीं फेंक देते हैं?
2: दूर तक नाली वाली अपनी सामने सब घर के साफ करते हैं
1: जी। आसपास के लोग भी, आसपास के लोग भी जागरूक हैं चंद्रकांता जी आपके आसपास?
2: बहुत अच्छे
1: जी। तो
2: नमस्कार जी, आप सबको
1: जी, आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम सुनती हैं आप हमारे?
2: अभी मैं सुनते सुनते मैं बता रही हूँ, आज मेरी उम्र 77 साल की हो रही है, मैं तो 75 साल के साल से, लेकिन कभी फोन नहीं लगता।
1: चलिए अच्छा, आज तो लग गया है। कैसे लगते हैं आपको आकाशवाणी निजामाबाद के कार्यक्रम?
2: बहुत अच्छे लगते हैं
1: हमारा महिला जगत कार्यक्रम।
2: हाँ जी, ये भी सुनती हूँ, घर आंगन भी सुनती हूँ मैं, सब दिल्ली से आता
1: हूँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप हमारी नियमित श्रोता हैं। और चंद्रकांता जी, आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वच्छता बनाए रखिएगा अपने आसपास।
2: आज मैंने पहले जीरो लगाई है और अब ये

0: पर मिला, नंबर तो मैं बहुत बार मिलाती थी लेकिन नहीं मिला था।
1: जी चलिए, अगली बार फिर कॉल कीजिएगा। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए हेलो सखी कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, साफ सफाई का महत्व जीवन में बहुत होता है। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना, कूड़ा कचरा खुले स्थान पर न डालना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कार्यक्रम में एक और कॉल हमें आ रही है। हेलो सखी, हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सर ये महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत है, कृपया इसमें महिलाओं की ही कॉल हम अटेंड करते हैं। अगर कोई आपके आसपास महिला है आपके घर में, तो आप उनसे हमारी बात करा सकते हैं। ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, ये हेलो सखी कार्यक्रम है महिलाओं का। जी तो बहनों, हम बात कर रहे थे स्वच्छता में जन भागीदारी की। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का जो भी गीला और सूखा कचरा होता है उसे हमें अलग अलग करना चाहिए। एक कॉल और पहुंच रही है हम तक, कॉल रिसीव कर लेते हैं। हेलो सखी।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: कौन बात? मैं उत्तराखंड से मंजू बोल रही
1: हूँ। कौन बात कर रही हैं आप?
2: उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल सिंधी गांव से मंजू देवी बात कर रही हूँ।
1: मंजू देवी जी, आपका स्वागत है हमारे हेलो सखी कार्यक्रम में। कैसी हैं आप
2: जी? हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग और समस्त स्टाफ सभी अच्छे?
1: हाँ जी, हम लोग भी सब बहुत अच्छे हैं मंजू जी। मंजू जी, हमारे कार्यक्रम में आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं कि स्वच्छता में जन भागीदारी कैसे लोग कर सकते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने आसपास स्वच्छता के लिए आप क्या क्या ध्यान रखती हैं, बताइए जरा।
2: हाँ जी, ये प्रोग्राम में शुरू से सुन रही हूँ इसका, ये मैंने सुन लिया था।
1: हाँ जी,
2: तो इसलिए स्वच्छता के लिए तो महिलाएं सबसे पहले एक रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्वच्छता बनाए रखने में उनका ही संपूर्ण योगदान रहता है। घर हो चाहे आस पास हो चाहे समाज हो, उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो हमारी यही जिम्मेदारी है कि हमें कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंक के एक कूड़ादान बनाना चाहिए, जिसमें सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग रखना चाहिए।
1: जी हाँ।
2: और बचा हुआ कूड़ा जैसे हमारे साग सब्जी के छिलके, खराब सब्जियां वगैरह, ये हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक छोटा सा गड्ढा खेत में बना के वहां डाल देना चाहिए, जिससे कंपोस्ट खाद बहुत अच्छी बन जाती है।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया।
2: और ये हमारे छोटे मोटे गमलों में डालने के लिए भी बहुत अच्छा काम में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्लास्टिक पॉलिथीन जो है, हम रैपर भी है जो टॉपिक, और इसको भी इधर उधर भी फेंकना चाहिए। जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं, उन्हें भी ये सिखाना चाहिए कि इसको बाहर इधर नहीं फेंकना है और इस डस्टबिन में डालना है। क्योंकि ये जो चीज है ये लाखों सालों तक पड़ी रह जाएगी, लेकिन सड़ती नहीं है, खराब नहीं होती, जो हमारी भूमि को बंजर बनाती है।
1: जी मंजू जी, आप तो बहुत जागरूक हैं, इतनी जानकारी आपने दी है कार्यक्रम में हमारे सभी सुनने वालों को। और उम्मीद करते हैं आपने जो भी उपाय बताए हैं, हमारी जो बहनें हैं अपने दैनिक जीवन में अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगी। और मंजू जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप?
2: कहना तो यही चाहते हैं कि अपना वेस्ट सामान नदियों में ना फेंके। ये जो नदियां हैं ये हमारी माता है, माता को हम गंदा करेंगे तो हम अपनी माता का सम्मान नहीं करते। इसलिए घास हो या कूड़ा हो, पन्नी बोतल या फिर अपने पुराने कपड़े ही लोग नदी में बहा देते, कृपया कर ऐसा ना करें।
1: बहुत अच्छा संदेश जी, बहुत अच्छा संदेश आपका पहुंचा है श्रोताओं तक मंजू जी, और आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोता बहनों, देखिए हमारे श्रोता कितनी जागरूक हैं कि किस तरह से अपने जीवन में वो कचरे का प्रबंधन करती हैं। और बहनों,

समय समय पर हमें जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। अगर आपके आसपास क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी आपको भाग लेना चाहिए। और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, जैसे बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, कॉलेज, पार्क, बाजार, सड़कें या फिर हमारे धार्मिक स्थल, यहाँ पर भी अक्सर हम लोग कचरा फैला देते हैं, तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। और बहनों, कार्यक्रम में थोड़ा सा विराम लेते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से आपकी कॉल अटेंड करेंगे।

श्रोताओं, आपने सुना ये प्यारा सा गीत और उम्मीद करते हैं हेलो सखी में ये गीत आपको पसंद आया होगा। और बहनों, हेलो सखी कार्यक्रम में आज हमारा बातचीत का विषय है स्वच्छता में जनभागीदारी। बहनों, पॉलीथीन और प्लास्टिक ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं हमारे धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इन चीज़ों का हमें प्रयोग दैनिक जीवन में कम से कम करें, मैं तो कहूँगी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारी जो धरती है, पर्यावरण, वो भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही बहनों, हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, हम देखते हैं कि वो साफ सफाई के लिए निरंतर लगे रहते हैं। हमें स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और हर किसी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी, मेरा स्वच्छ गांव, मेरा स्वच्छ शहर, इस भावना से स्वच्छता में हर किसी को सहयोग करना चाहिए। स्वच्छता केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, वरन हर नागरिक की ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। और हम लोग देखते ही हैं कि समय समय पर बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा भी, स्वयंसेवी संगठन के द्वारा भी। तो ऐसे कार्यक्रमों में हम सभी को भाग लेना चाहिए बहनों। और महिलाएं तो अगर किसी चीज़ को ठान लें तो वो कार्य तो कभी ऐसा नहीं है कि पूरा ना हो। तो बहनों, महिलाओं से इसीलिए हम ये खास कर कह रहे हैं कि आप, एक गृहिणी जो है घर की दूरी होती है, पहले तो घर की स्वच्छता का वो बहुत ध्यान रखती है, अपने घर के आसपास का ध्यान रखती है और समाज की स्वच्छता का ध्यान भी कहीं ना कहीं हमें रखना चाहिए। अपने बच्चों को भी इसके लिए हमें जागरूक करना चाहिए। छोटे बच्चों को बचपन से ही हमें सिखाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो कूड़ा कचरा है उसे डस्टबिन में डालना है। यदि बच्चा विद्यालय में जा रहा है या कहीं बाहर मार्केट में है या किसी सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ है, तो उसे सिखाएं कि जो भी खाने पीने की चीज़ वो खाता है, चाहे आप उन्हें पैकेजिंग वाली चीज़ देते हैं या फ्रूट्स देते हैं, तो उनके छिलके वगैरह वो डस्टबिन में ही डालें। जब बचपन से ही बच्चों में ये आदत रहेगी तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे वो इन आदतों को निरंतर फॉलो करते हैं। और बहनों, इसके साथ ही अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छता का ध्यान नहीं

करते हैं या पॉलीथीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं और आपको जानकारी है, तो ऐसे लोगों को आप जागरूक कर सकती हैं, इन चीज़ों को नुकसान उन्हें बता सकती हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदायक होते हैं। तो बहनों, आप सभी अपनी जनभागीदारी स्वच्छता में ज़रूर देंगी। इसी के साथ हेलो सखी के साथ ही आज का महिला जगत कार्यक्रम भी अब यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने साथी सुनीता नेगी को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। बहनों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपा निधान सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोकधारा में इस समय आप सुन रहे हैं कृपा निधान सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। तो पेश है आज के कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत, आवाज है कृपा निधान सिंह की।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेट हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्व

0: सम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, OMR शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में

0: राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

0: आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार्थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं कलाकार हैं गायक के, जिनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्नत। के को भारत के प्रतिभाशाली गायकों में से एक माना जाता है। विभिन्न संगीत शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में गीत गाए। केके को 2 स्क्रीन पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुआ। श्रोताओं, केके के बारे में ढेर सारी बातें आज हम करने वाले हैं, मगर आइए अभी कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गायक के बारे में। श्रोताओं, केके का जन्म 23 अगस्त साल 1968 को दिल्ली में हुआ।

था। पिता का नाम सीएस नायर और माँ का कनकवल्ली कुन्नत था। श्रोताओं, उन्हें मातृवंशीय उत्तराधिकार के माध्यम से सरनेम मिला कुन्नत। केके ने दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में दिल्ली के ही कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रोताओं, केके लगभग 3,500 जिंगल्स को अपनी आवाज़ दे चुके थे। केके ने गायन की कोई शिक्षा नहीं ली, बस अपने आदर्श किशोर कुमार की तरह ही सुनकर गीत गुनगुनाने लगे और फिर गाने लगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं गायक केके के बारे में। केके ने साल 1991 में अपनी बचपन की दोस्त ज्योति कृष्णा से विवाह किया। उनके बेटे नकुल भी गायक हैं और उनकी बेटी का नाम है तमारा। साल 1994 में केके ने मुंबई जाने का मन बनाया। केके ने लेस्ली लुईस को अपना गुरु माना क्योंकि उन्होंने ही केके को मुंबई में गाने के लिए पहला जिंगल दिया था। बात अगर बॉलीवुड की करें श्रोताओं, तो साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गीत तड़प तड़प के इस दिल से दुआ निकलती रही के लिए उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ दी। हालांकि फिल्म माचिस में उन्होंने, जो कि साल 1996 में आई थी, उसमें एक गीत था छोड़ आए हम वो गलियां, उसमें भी गीत का एक हिस्सा वो गा चुके थे। लेकिन केके को जो लोकप्रियता मिली वो मिली फिल्म हम दिल दे चुके सनम के इस गीत से।

श्रोताओं, के गाए लोकप्रिय गीतों में शामिल हैं फिल्म देवदास का गीत डोला रे डोला, फिल्म ओम शांति का गीत आँखों में तेरी, और इसके अलावा खुदा जाने, पिया आए ना, इंडिया वाले और तू जो मिला। धूप पानी बहने दे, श्रोताओं ये गीत उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुआ पहला गीत था। फिल्मों के अलावा केके ने टेलीविजन धारावाहिकों के लिए कई गीत गाए, जिनमें शामिल हैं जस्ट मोहब्बत, शकला का बूम बूम, कुछ झुकी सी पलकें, हिप हिप हुर्रे, काव्यांजलि और जस्ट डांस। के टैलेंट हंट शो फेम गुरुकुल में भी जूरी सदस्य थे।

तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद केके के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा दिल में रहते हैं और सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम था

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज के कलाकार थे गायक के। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज सुनते हैं किसानों की आय दुगनी करने की सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ई नाम योजना के बारे में। श्रोताओं, सरकार द्वारा समय समय पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता रहता है, जिससे किसान अपनी आय को बढ़ाकर उपज के माध्यम से और अन्य खेती के द्वारा आय को दुगना कर सकें। तो आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ई नाम योजना के विषय में। पहले चर्चा करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विषय में। श्रोताओं, इस योजना के द्वारा किसानों की खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए बेहद कम ब्याज दर पर सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। सामान्यतः इस लोन के लिए ब्याज दर को 7% रखा गया है और ये ऋण बिना गारंटी के प्रदान किया जाता है, जिसमें समय पर ऋण का भुगतान करने पर 3% की छूट भी दी जाती है, यानी मात्र 4% ब्याज दर पर ये ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक के किसान शामिल हो सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विषय में, और अब चर्चा करते हैं ई नाम यानी अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के विषय में। इस योजना का उद्देश्य देश की सभी कृषि मंडियों को ऑनलाइन आपस में जोड़ना है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके और किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी सही प्रकार का मूल्य मिल सके। किसान घर बैठे या फिर मंडी से अपनी फसल के भाव ऑनलाइन देखकर देश की किसी भी मंडी में किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं, और फसल बिकने के बाद सीधा डिजिटल भुगतान भी ऑनलाइन प्राप्त कर

सकते हैं अपने खाते में। इन योजनाओं से अधिक जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ई नाम योजना के पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ई नाम योजना के विषय में। अब सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:10 हुई हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनते हैं हमारे केंद्र

के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे गजलें। कलाकार रहेंगे सनवर अली खान। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युवाणी में क्रम रहेगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज दिल से दिल तक लव स्टोरी और बूस्टर्स का। आज शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में किसान भाई सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक। डॉक्टर चंद्रभानु से भेंट करेंगे प्रमोद सिंह। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे। आज रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत रात्रि 8:00 कार्यक्रम एक ही फिल्म से और रात्रि 10:30 पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल 7:32 पर कानून की बात, ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। और कल प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल, ये कार्यक्रम भी हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें जानकारी का विषय रहेगा स्वास्थ्यवर्धक सोयाबीन, खेती की बातें। इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा गन्ने की फसल की निगरानी, और किसान भाई ये जानकारी सुनेंगे कल प्रातः 7:10 पर। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम प्रतिदिन हमारे श्रोता सुनते हैं, प्रातः 7:31 पर। धरती गाती है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल प्रातः 9:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे रुहेलखंडी लोकगीत। कल दिन में 11:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। घर संसार कार्यक्रम प्रसारित होगा कल दिन में 1:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में कल 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, मवेशियों में लंपी रोग कारण लक्षण और निवारण। विविधा कार्यक्रम में कल 6:45 पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। श्रोताओं, ये था हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: बातें दिल में ही रह जाती हैं और कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो सिर्फ आवाज से ही पहचाने जाते हैं।
1: और दोस्तों, रेडियो का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें हम आपको देख नहीं पाते, फिर भी हर रोज एक अपनापन सा जुड़ जाता है, और यही तो होता है दिल से दिल का रिश्ता।
0: जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। और आज आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: और दोस्तों, शिवानी के साथ इस खूबसूरत सी शाम में शामिल हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट अलीना। और दोस्तों, आज इस खूबसूरत सफर में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत कुछ खास।
0: बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम आपस में जुड़े हैं दिल से दिल का रिश्ता निभाने के लिए, और खास बात दोस्तों ये है कि आज का हमारा सेगमेंट भी है दिल से दिल तक।
1: जी हाँ दोस्तों, और दिल से दिल तक सेगमेंट में हम बात करते हैं किसी खास थीम पर। तो आज भी एक खास थीम रहेगी हमारे सेगमेंट में, जिस पर आप अपने कोई भी खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
0: लेकिन अलीना, यादें तो तब बताएंगे ना हमारे दोस्त जब उन्हें हम थीम बताएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी थीम कुछ इस तरह है कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है। कुछ कहानियां हम सबको बता देते हैं और कुछ सिर्फ अपने किसी खास को।
1: और दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी हमारे दिलों में बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी थीम है कहानी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वो कहानी जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, या फिर वो कहानी जो आंखें नम कर देती है।
0: या फिर कोई ऐसा छोटा सा किस्सा जो उस वक्त मामूली सा लगा हो, लेकिन आज जब सोचते हैं तो लगता है यार, ये भी तो मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी ही थी।
1: तो दोस्तों, दिल से दिल तक की थीम तो हमने आपको बता ही दी है, लेकिन अब बताना है आपको हमारा आज का बुझो तो जाने के सवाल का जवाब। सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर AI परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है?
0: जी हाँ दोस्तों, और इस सवाल का जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। तब तक करिए आप ये छोटा सा काम, हम सुनवाते हैं आज को आपकी थीम का ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: तो दोस्तों, हमारा दिल से दिल तक का सफर तो जारी ही है, और दोस्तों हमें है आपके खूबसूरत से मैसेजेस का इंतजार। तो जल्दी जल्दी हमें खूब सारे मैसेजेस, अपनी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ चीजें हमारे पास होते हुए भी हमें उनकी वैल्यू नहीं समझ आती,
5: और कुछ

0: चीजें जब हमसे दूर चली जाती हैं, तब अचानक लगता है कि ये तो मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था।
1: और बिना वार्निंग के हम कुछ साल पीछे चले जाते हैं,
0: वही स्कूल के दिन, वो कॉलेज की मस्ती,
1: वो दोस्तों के साथ बिना किसी रीजन के घंटों बातें करना।
0: और वो वक्त जब फ्यूचर की टेंशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था कि कल क्रिकेट का मैच किस ग्राउंड में खेलना है।
1: लेकिन दोस्तों अजीब बात है ना, वक्त तब बहुत स्लो लगता था और आज आज लगता है जैसे कल की ही तो बात थी।
0: अलीना, शायद इसी का नाम है कुछ और।
1: जी हाँ, और उस कुछ और का नाम हम अभी नहीं बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए आज हम थोड़ा रुकेंगे।
0: रोज की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेंगे और उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ को सिर्फ लाइफ नहीं, एक कहानी बनाती है।
1: किसी की कहानी में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं और किसी की कहानी में स्ट्रगल्स, किसी में कुछ अधूरे सपने।
0: तो दोस्तों, यही तो होता है जिंदगी नामा।
1: और दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि आखिर जिंदगी नामा होता क्या है। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं
0: ये अगला हमारा थीम का सॉन्ग।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: सुनती हो?
3: हाँ जी, सुनाइए।
5: एक बात कहूँ?
3: हाँ बोलो।
5: मुझे ना समझदार औरत से ही शादी करनी चाहिए थी।
3: अरे कोई भी समझदार औरत तुमसे कभी शादी नहीं करती।
5: बस मुझे यही तो साबित करना था।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम आगे बात करेंगे कि आखिर जिंदगी नामा होता क्या है। तो दोस्तों, जिंदगी नामा, नाम ही कितना खूबसूरत है ना। जिंदगी और नामा मतलब कि ये जिंदगी की एक डायरी। और दोस्तों, हर किसी की डायरी अलग होती है।
3: जी हाँ, किसी के पन्नों पर हंसी होती है तो किसी पर आंसू, और कभी कहीं सक्सेस तो कहीं फेलियर भी होता है।
5: लेकिन हम अक्सर अच्छे पेजेस याद रखते हैं और डिफिकल्ट चैप्टर्स को भूलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वही डिफिकल्ट चैप्टर्स हमें कुछ बनाते हैं।
3: एक रिजेक्शन, एक फेल।

0: ईयर सब खत्म लगता है, पर बाद में लगता है कि अच्छा ही हुआ था, वो ही हमें थोड़ा और स्ट्रांग बना देता है।
1: दोस्तों, जिंदगी नामा सिर्फ स्ट्रगल्स नहीं है, ये है सुबह की चाय, माँ की आवाज, दोस्तों का रैंडम फोन और विंडो से बाहर देखना।
0: बचपन में जल्दी बड़ा होने का क्रेज था, और अब जब बचपन से हम देखते हैं तो हमें बचपन की बहुत ज्यादा याद आती है।
1: इसीलिए दोस्तों, अपने अंदर के बच्चे से मिलना जरूरी है, जो बिना टेंशन छोटी छोटी खुशियों में भी जीता था।
0: हम सब के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो भी खुद के लिए, है ना? तो दोस्तों, कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं कैसा हूँ?
1: और अपनी जर्नी को दोस्तों थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए। जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं होती।
0: फीलिंग्स और यादें भी होती हैं। हर चैप्टर परफेक्ट नहीं होता, पर हर चैप्टर जरूरी होता है।
1: तो दोस्तों, जिंदगी को सिर्फ गुजारिएगा मत, उसे फील करिए। तो यही था हमारा आज का जिंदगी नामा।
0: और अलीना, अब हमारे एक दोस्त का हमें मैसेज भी आ गया है, दिल से दिल तक के अंतर्गत। तो देखते हैं कि ये मैसेज हमें कहाँ से मिला है। ये मैसेज हमें मिला है मदनगिरी ग्राम गाधरोना रुड़की से। ये लिखते हैं कि मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल सकता। कॉलेज के दिनों की बात है, एक कॉलेज के ग्राउंड में दूसरे कॉलेज के साथ हॉकी का मैच चल रहा था और मैं भी खेल रहा था। गेंद हमारे ग्राउंड के अंदर आ गई थी। हम भरसक प्रयास कर रहे थे कि गेंद को क्लियर करके अपने डीके के बाहर निकाल दें, लेकिन अचानक मेरी हॉकी गेंद पर लगी और गेंद हमारे गोल पोस्ट में चली गई। अंपायर ने हमारे ऊपर गोल का इशारा कर दिया। मैं बहुत हताश था, मेरी गलती से हमारे ऊपर गोल का फाइन लग गया था, लेकिन अचानक मेरे कप्तान मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं और मेहनत से खेलो। मेरा मनोबल बढ़ गया और मैंने दुगने उत्साह से खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद मैं गेंद को लेकर विपक्ष की टीम की ओर बढ़ा। उन्होंने बचाव का कोशिश भी की, लेकिन कुछ मिनटों के बाद में मैंने गोल को उसे इस गोल में बदल दिया। बस हम वहीं बहुत उत्साही हो गए। फिर मैं बहुत ज़्यादा उत्साह से खेलने लगा। कुछ ही मिनटों बाद हमने दूसरा गोल कर दिया और वो भी मेरे नाम था। बस फिर क्या था कि कुछ देर बाद एम्पायर की सीटी बजी और खेल खत्म हो गया। हम दो एक से मैच जीत गए। दोनों गोल मैंने किए। मुझे मेरे साथी कंधे पर बिठाकर मैदान से बाहर लाए, लेकिन मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मेरी गलती से मेरी टीम के ऊपर गोल हुआ था।
1: मदनगिरी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत याद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत सा मैसेज भेजने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं हमारी आज की लव स्टोरी का एपिसोड 2, एक मुलाकात जो जिंदगी बन गई।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: पिछले एपिसोड में आपने सुना कुणाल को जानवी की डायरी में एक तस्वीर मिली थी। कुणाल पूरी रात उस तस्वीर के बारे में सोचता रहा और अगली सुबह उसने जानवी को फोन किया, पर जानवी का फोन बंद था। कुछ देर बाद कुणाल को एक मैसेज आया, अगर फ्री हो तो शाम को उसी कैफे में मिलो। वो दोनों मिलते हैं। कुणाल जानवी से उस तस्वीर के बारे में पूछता है, जानवी तुम दुल्हन के जोड़े में, और वो लड़का कौन था? जानवी ने बड़े ही सब्र के साथ में कुणाल को जवाब दिया, कुणाल हर तस्वीर की कहानी वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती है, वो बस एक फोटोशूट था एक एनजीओ के लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, जानवी के इतना कहते ही कुणाल की तो जैसे धड़कने ही वापस आ गईं, लेकिन उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। और एक दिन कुणाल ने तय किया कि अब वो जानवी को अपने दिल की बात बताएगा, और उसने कैफे में एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया, फूल, एक छोटा सा गिफ्ट और दिल में हजारों बातें। जैसे ही वो कैफे पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वहां जानवी किसी अनजान आदमी के साथ बैठी होती है। वो जानवी से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। कुणाल ये बात सुन लेता है। जानवी उस आदमी को देखकर रो पड़ती है और कुणाल चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसने देखा, जानवी ने उस आदमी को एक पुराना लिफाफा दिया। आखिर क्या था उस लिफाफे में? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं उस लिफाफे का राज, तो सुनना ना भूलें हमारा अगला।

0: एपिसोड। तो दोस्तों, अब दिल से दिल तक थीम में हमें एक और प्यारा सा मैसेज मिला है, तो देखते हैं हमें मैसेज कहाँ से मिला है।
1: हमें मैसेज भेजने वाली है पूजा गाजियाबाद से। ये कहती है, कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, कई चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई और मैं काफी परेशान रही। लेकिन आज जब मैं उस दौर को याद करती हूँ तो लगता है कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जिंदगी की कुछ कहानियाँ उस वक्त समझ नहीं आती, उनका मतलब बाद में पता चलता है। बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमें एक और मैसेज मिला है जयपुर से, आदित्य जी ने भेजा है और ये लिखते हैं, मेरी कहानी मेरे पापा से जुड़ी है। बचपन से जब भी मैं किसी चीज़ में फेल होता था तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे, कोशिश करना बंद मत करना। उस समय उनकी बात बहुत सिंपल लगती थी, लेकिन आज ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आती है वही बात मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख भी इसी कहानी में छुपी है।
1: बहुत ही खूबसूरत लिखा आदित्य आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपनी खूबसूरत सी याद हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: डॉक्टर साहब नमस्ते।
4: नमस्ते नमस्ते, आओ। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है?
3: अरे डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में बड़ी दिक्कत हो रही है, दिख भी नहीं रहा मुझे ढंग से।
4: अच्छा, लाओ जरा मैं चेक करता हूँ। और मैडम, आप ना जैसे अपने पति को देखती हो ना, बिल्कुल वैसे देखो मुझे।
3: लेकिन डॉक्टर साहब क्यों?
4: अरे तुमने जो दिक्कत बताई है ना, उसके लिए आंखों में आई ड्रॉप डालना है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो शिवानी, हमें एक और मैसेज आया है, भेजने वाले हैं अनिल बिनोचा जी, जो कि नगीना से हैं। ये कहते हैं, जब एक जिंदगी इस संसार में आती है, तब शून्य से भी शून्य होती है, फिर एक कली फूल बन के खिलती है, तभी एक जल में कई तस्वीरें बनती हैं, और जब ये सब मंजर हो जाते हैं, तब जिंदगी सजती सवरती है और निखरती है। बहुत ही खूब कहा आपने अनिल बिनोचा जी।
3: अलीना, वैसे ना कहानी बस एक शब्द है, लेकिन इस एक शब्द में कितनी सारी जिंदगियां छिपी होती है ना। किसी की कहानी प्यार से शुरू होती है, किसी की इंतज़ार पर रुक जाती है, किसी की कहानी में जीत होती है, तो किसी की कहानी में हार के बाद दोबारा उठने का हौसला होता है। और मज़ेदार बात यह है कि हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो होते हैं। कभी वैसे सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की वो कौन सी कहानी है जिसे याद करते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? वो पहली मुलाकात हो सकती है, वो बचपन की शरारत, माँ की डांट, दोस्तों के साथ बिताया कुछ बेफिक्र वाले दिन, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो हमारी कहानी में आया और हमेशा के लिए एक हिस्सा बन गया।
2: और शिवानी, हमें एक और मैसेज मिल चुका है, भेजने वाली है सिमरन चंडीगढ़ से। ये कहती है, मेरी जिंदगी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे हैं और कुछ नए सपने रास्ते में हैं। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी एक परफेक्ट कहानी होनी चाहिए, लेकिन अब लगता है कि उतार चढ़ाव ही तो कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। बहुत खूब कहा सिमरन आपने। इसी के साथ सुनते हैं प्रोग्राम का अगला खूबसूरत सा गीत, हमारी थीम से रिलेटेड।

0: तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल, और सवाल था हमारा, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है?
1: तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है कि इसको फोर्थ स्थान मिला है, फोर्थ प्लेस मिली है। तो चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि हैं अनिल विनोचा, जॉन डी कैस्ट्रो, प्रवीण चौहान, भगवंत चौबे लाडला जी, आकाश रस्तोगी, मोहम्मद रफीक पंवार, सुरेश राठौड़, देवशंकर तामूरिया, दीपेश वर्मा, दिगर्शन गौड़, जाकिर मंसूरी, बबलेश पंवार, गजानन येले, आफ्ताब अंसारी, ताज अंसारी, धर्मेंद्र छीपा, मोहम्मद हसैन पवार। तो दोस्तों, यही थे हमारे सही जवाब देने वालों के नाम।
0: तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।
2: आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में, जहां रंग है, यार है, फुर्सत है, शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो। चलो कहूं तुमसे मैं मेरी कहानी।

0: दोस्तों, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती है, कुछ किस्से अल्फाजों में नहीं मिलते हैं। जो गुजरता है दिल पर वही कहानी बन जाता है, वरना हर किसी को कहाँ अपने जैसा कोई मिलता है।
1: और शिवानी, जाते जाते ये एक और मैसेज खूबसूरत सा जो हमें नेहा ने भेजा है मेरठ से, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपनी जो याद शेयर करी है, ये कहती है, नमस्ते, मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी है। कुछ साल पहले मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और लगा था कि शायद मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है वो मुश्किल वक्त मेरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा था।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने खत के ज़रिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वार के निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 2467-63।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है अपडेटेड रहने के लिए 9457078288। और दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो भी फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर भी सुन सकते हैं।
0: और हमारे दोस्त बता भी सकते हैं अलीना कि जो आज की हमारी थीम थी कहानी, वो हमारे दोस्तों को कैसे

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रूपये का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंजम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन

0: लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपके भैया प्रमोद सिंह की राम राम। भैया कैसे हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? और भैया खेती बाड़ी में क्या चल रहा है आजकल? देखो भाई, आजकल बारिश बहुत हो रही है और इस मौसम में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत तो पड़े ही करा है। सबसे पहली बात तो यूँ है भैया कि अपनी फसलों की देखभाल सही तरीके से करते रहें, समय का ध्यान रखें और भाई अपने खेतों में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनने दें, क्योंकि भैया ज़्यादा पानी भरने से फसलों को नुकसान हो सके है। बारिश तो देखो लगातार हो ही रही है और भाई काम तो देखो सारे ही करने पड़े हैं। पशुओं के लिए चारा भी लाना है, अपनी घर गृहस्थी को भी देखना है और भैया हमारे इस कार्यक्रम को भी सुनना, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब भाई देखो, आज के कार्यक्रम में बात तो हम आपसे बहुत सारी करेंगे। आज मंगलवार है और तुम तो जानो ही हो भैया कि प्रत्येक मंगलवार को हम आपको सुनवावे हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। और भैया आज भी देखो इस पाठशाला का पाठ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बासमती धान के संबंध में एक नए विषय की जानकारी आपको दिलवाएंगे और भाई आपका मनोरंजन भी कराया जाएगा, आपसे बातचीत भी हम करते रहेंगे। पर देखो भाई, सबसे पहले आओ सुनो ले हैं आज का पाठ और सुनते हैं भैया बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे मास्टर जी।
3: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
3: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
3: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
0: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
0: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
1: तो प्रमोद भाई
0: जी, झुमरू भैया
1: भाई, देखो बासमती धान की फसल हमारे खेत में खड़ी है।
0: हुँ।
1: और भैया हम बासमती धान का उत्पादन जैविक तरीके से करना है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। और देखो इस पाठशाला में हम अपने किसान भाइयों को इस बारे में बताते भी रहे हैं।
1: तो भाई देखो, चाहे रोग नियंत्रण की बात हो चाहे भैया कीट नियंत्रण की बात हो, भैया हम सभी जो है जैविक तरीके अपनाने हैं और रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना। भैया
0: सही कह रहे हो, अगर हम भैया जैविक तरीके से बासमती धान की खेती करेंगे तो भैया उसका उत्पादन बढ़िया होगा और पैसे भी बढ़िया मिलेंगे किसान भाइयों को।
1: तो भाई देखो, बासमती धान में जैविक उत्पादन तकनीक, भाई हमारे आज के पाठ का यही विषय है।
0: हाँ भैया, विषय तो यही है। और इस बारे में बातचीत किससे करनी है, कौन जानकारी दे रहे हैं, जरा यो भी तो बताओ
1: भाई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रभानु, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली

0: अनुसंधान संस्थान मोदीपुरा मेरठ में। और भैया डॉक्टर चंद्रभानु जी जो है दूरभाष से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं,
1: तो भैया उनसे फिर दूरभाष पे बातचीत कर लें।
0: बिल्कुल, तो भैया बातचीत आप कर लो दूरभाष से।
1: ठीक है भाई, तो आओ करते हैं डॉक्टर चंद्रभानु जी से बातचीत।
2: तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: जो हम बात आज कर रहे हैं बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक की, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फसलों की जैविक उत्पादन तकनीकी है वो क्या है, और बासमती धान के लिए जैविक उत्पादन तकनीक का क्या महत्व है।
3: बहुत बढ़िया, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि जैविक उत्पादन तकनीकी, इस शब्द से आपके दिमाग में फीलिंग आ रही होगी कि बिना केमिकल वाले धान की उत्पादन तकनीकी
2: जी,
3: तो राष्ट्रीय मानक जो जैविक खेती के बने हुए हैं उसका पालन करते हुए बिना रसायनों के धान की उत्पादन की प्रक्रिया को जैविक उत्पादन तकनीकी कहते हैं। और इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे कि मानक के हिसाब से खेती करना, सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर तकनीकी पैकेज का उपयोग करना चाहिए, प्रोसेसिंग पैकेजिंग अच्छे से होना चाहिए, और किसान को प्रीमियम प्राइस मिलना चाहिए।
2: अच्छा।
3: और इसका देखा जाए जो महत्व है जैविक उत्पादन तकनीकी का, तो बासमती क्योंकि हमारे देश की एक बहुत ही प्रीमियम कृषि उत्पाद है जो कि विदेशों में इसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। देखा जाए तो हजारों करोड़ का इसका एक्सपोर्ट होता है, और पिछले हाल के वर्षों में देखा गया है कि हमारे एक्सपोर्टर्स का बहुत सारा कंसाइनमेंट कई देशों से, अरेबियन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, केमिकल का अधिक रेजिड्यू के कारण वो रिजेक्ट हो गया है, जिसमें भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई क्योंकि बासमती धान का रेट अच्छा मिलता है तो उसको उत्पादन के लिए बहुत सारा केमिकल डालने में हिचकिचाते नहीं है, और बहुत सारे रासायनिक उर्वरक और केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड प्रयोग करने से हमारे प्राकृतिक भूम हो गई, जल हो गया, जैव विविधता जिसमें बहुत सारे लाभकारी जीव जंतु हमारे एग्रो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, उनका बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। तीसरा है मानव स्वास्थ्य, और जो हमारे वाइल्ड एनिमल हैं इनके स्वास्थ्य पे भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है केमिकल एग्रीकल्चर का। तो आज की डेट में देखा जाए तो जिन एरिया में, चाहे धान वाले हों गन्ने वाले हों, जहां बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल एग्रीकल्चर में जो अत्यधिक अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, उस समस्याओं से निजात पाने में जैविक खेती बहुत हद तक लाभकारी है। ये महत्व होता है जैविक खेती का, चाहे हम फुल जैविक खेती करें संपूर्ण रूप से फसलों का, या अगर हम जैविक अंश भी हम कुछ मात्रा में अपने केमिकल एग्रीकल्चर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होता है।
2: डॉक्टर साहब, आपने जैविक खेती के महत्व के बारे में बहुत अधिक विस्तार से बताया है, किसान भाई बड़े ध्यान से इस बातचीत को सुन भी रहे हैं। और देखिए, जब हम बासमती धान की बात कर रहे हैं, बासमती धान का जो जैविक उत्पादन है वो हमें प्राप्त करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जैविक उत्पादन के लिए पोषण प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है बासमती धान में? डॉक्टर साहब,
3: इस पे एक चीज थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा।
2: जी जी,
3: पोषण पर अभी डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा किसान भाइयों को ये जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। जैविक उत्पादन तकनीकों में पांच स्तंभ आते हैं जैविक खेती के, उनमें मानक है, तो मानक का आप देखेंगे कि भारत सरकार का जो एपिडा है डिपार्टमेंट, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है 2024 का अपडेटेड वर्जन है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एक गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि हमें खेती करने में, फसलोत्पादन में क्या चीज प्रयोग करना है, क्या चीज नहीं करना है, तो किसान भाई उसी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए पूरी उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करें। दूसरा है प्रमाणीकरण, जब आपका बासमती धान चाहे वो पीजीएफ के माध्यम से प्रमाणित हो, चाहे थर्ड पार्टी के माध्यम से, वो प्रमाणित जरूर होना चाहिए, ताकि जो बाजार में हमारा कस्टमर खरीद रहा है हमसे धान, तो उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए ये हमारा जो अमुक उत्पाद है बासमती, ये पूरी तरह से सर्टिफाइड है, इसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है।
2: जी जी।
3: तीसरा है तकनीकी पैकेज, कई बार किसान भाइयों को अच्छी उपज और गुणवत्ता युक्त उपज लेने का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, तो वैज्ञानिकों ने, हमारे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ ने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के धान वाले अन्य संस्थानों ने भी जैविक उत्पादन तकनीकी, चाहे वो

0: बासमती राइस की हो चाहे अन्य फसलों की हो, इसके ऊपर पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप किया है और ये पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। उनका प्रयोग करते हुए किसान भाई आराम से अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी उपज वाला जैविक बासमती धान पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: चौथा, प्रसंस्करण और पैकेजिंग इसलिए जरूरी है, जब हम इतना कीमती जैविक धान बासमती धान उत्पादन करेंगे, इसका प्रसंस्करण नॉर्मल धान से अलग होना चाहिए, ताकि उसमें एक तो उसका मिक्सचर न हो केमिकल वाले का, दूसरा एक विशेष लुक होना चाहिए हमारे बासमती धान के पैकेजिंग का, ताकि उससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उसमें एक प्राकृतिक या जैविक लुक आना चाहिए पैकेजिंग में। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगो गाइडलाइन है, या जैविक भारत का लोगो है, या पीबीएस इंडिया का लोगो है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे उस पे वेल लेबल्ड होना चाहिए पैकेजिंग से। पांचवा जो प्रमुख स्तंभ है वह है बिक्री या विपणन। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बासमती उत्पादन हम जैविक तरीके से करते हैं, तो उनको थोड़ा प्रीमियम प्राइस अवश्य मिलना चाहिए, वो कम से कम डेढ़ गुना मिले, और ज्यादा से ज्यादा जितना किसान भाइयों को मिलेगा उतना अच्छा रहेगा उनके लिए, ताकि जैविक खेती आगे अच्छे से बढ़े। तो किसान भाइयों को जो हमारी उपभोक्ता है, ये खासकर मेट्रो सिटीज में जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है और जो उसके लिए पे कर सकें अच्छा दाम, उनको टारगेट करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रीमियम प्राइस अच्छा मिलेगा
1: जी।
0: अब आते हैं बासमती धान के पोषण प्रबंधन पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पोषण प्रबंधन पे हमारे किसान भाइयों को दो चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला तो है कि आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करना। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? 17 होते हैं, मेजर हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फिर उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो कई तरह के हैं, सब मिला के 17 तरह के पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। क्योंकि जैविक खेती में हम कोई एक दो पोषक तत्वों वाले फर्टिलाइजर का प्रयोग तो करते नहीं है, उसमें या तो गोबर की खाद डालेंगे, केचुआ खाद डालेंगे, खलिया डालेंगे, कम्पोस्ट डालेंगे या अन्य जैविक खाद डालेंगे, उसमें सभी तरह के पोषक तत्व लगभग मौजूद होते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को केवल नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करना है। तो जैसे गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन सामान्यतया पाई जाती है, और केचुआ खाद में यही 1.5 से 2.5% तक पाई जाती है, खलियों में 5 से 6% पाई जाती है। इसके अलावा हरी खाद है, हरी खाद एक इंटीग्रल कंपोनेंट है और इसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और हाल के इसी साल हमारे भारत सरकार ने और राष्ट्र सरकारों ने भी बहुत व्यापक स्तर पर हरी खाद को बढ़ावा दिया है, और नाइट्रोजन मैनेजमेंट में फसलों की इसका विशेष रूप से महत्व है। तो हमारे किसान भाई जब भी धान लगाएं, उससे पहले गर्मियों के सीजन में हरी खाद, चाहे ढैंचा हो, सनई हो या अन्य दलहनी फसलें, इसमें ढैंचा सबसे उपयोगी है।
1: अच्छा।
0: जो कि ये लगभग प्रति वर्ग मीटर 3.5 से 4 किलो तक बायोमास पैदा कर देती है 45 से 50 दिन के अंदर, और इससे लगभग 60 से लेकर 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खेत में प्राकृतिक रूप से आ जाता है। इसमें नाइट्रोजन मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। और किसान भाइयों को पोषण प्रबंधन में एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि फसल की शुरुआती अवस्था में हम जितना अच्छा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, उतने अच्छे से हमारे धान की फसल स्टेब्लिश हो जाएगी और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि उसके कल्ले निकलना या टिलरिंग की अवस्था नाइट्रोजन की कमी के कारण अफेक्ट हुई, तब वो धान लास्ट तक संभल नहीं पाएगा। इस पे हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर कितनी खादें लगेंगी, तो लगभग 100 क्विंटल के आसपास गोबर की खाद, उसके बाद केचुआ खाद जो कि आप खड़ी फसल में भी दे सकते हैं 30 क्विंटल, और खलियां जो कि 3 से 4 क्विंटल, क्योंकि लगभग 10% नाइट्रोजन खलियों से रिकमेंडेड है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रति हेक्टेयर की दर से इन खादों का प्रयोग करेंगे, तो सफलतापूर्वक पोषण प्रबंधन कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जो माइक्रोबियल कंसोर्सिया, जिसमें कि आप देखेंगे जो एक जीवामृत है, जो कि प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाला ऐसा द्रव्य है जिसे किसान हमारे खेत पर ही बना सकते हैं। जीवामृत को खेत की तैयारी से पहले और शुरुआती अवस्था में और खड़ी फसल में, चाहे वो फर्टिगेशन के माध्यम से प्रयोग करें या फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करें, तो उससे क्या है, जो भी हमारे पोषक तत्व मृदा में पाए जाते हैं वो घुलनशील अवस्था में तेजी से फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। इसके अलावा कई सारी कंपनियां, कई राज्य सरकारों के जो संस्थान हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, वो विशेष रूप से माइक्रोबियल कंसोर्सिया तैयार करते हैं, जिसमें फास्फेट सालबुलाइजर, पोटास सालबुलाइजर, सल्फर सालबुलाइजर, इस तरह के कंसोर्सिया का प्रयोग रिकमेंडेशन के हिसाब से अवश्य करें, ताकि जो हमारे पोषक तत्व फसल के भूमि में मौजूद हैं

0: वो आसानी से फसलों को उपलब्ध हो पाए।
1: जी जी जी डॉक्टर, देखिए हमने ये पोषण प्रबंधन की बात कर ली है। अब देखिए बासमती धान में बहुत सारे कीट और बीमारियों के लगने की भी संभावना बनी रहती है, और ये जो इसका प्रबंधन है वो एक बहुत ही प्रमुख प्रक्रिया है। तो इसमें कीड़ों और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया।
1: जी
0: बासमती धान में या जैविक उत्पादन तकनीकी में एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपने अच्छे से पोषण प्रबंधन कर लिया है तो लगभग आपकी 70-75% फसल की गारंटी हो जाती है, और जो बचा हुआ 25% तक उपज है या गुणवत्ता है वो अच्छे से नाशी जीव प्रबंधन कर लें तो उसमें से लगभग 90% सफलता मिल जाती है। तो बासमती धान में नासी जीवों जिसमें से कीट बीमारी आते हैं या निमेटोड लगते हैं इनकी बात करी जाए,
1: हाँ हाँ।
0: तो जहां तक नॉर्थ इंडिया में जहां की बासमती धान का हब है देखा जाए तो कीटों में बात करी जाए तो बोरर्स जिसमें की पीला तना वेदक है और अन्य तरह के तना वेदक है इनकी समस्या विकराल रूप है। और चूंकि जब जैविक उत्पादन करते हैं तो इसमें किसी भी तरह के केमिकल जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो ऐसे में सामान्यतया तो कीट कम लगते हैं हमारी जो जैविक तरीके से उगाई गई फसलें हैं, लेकिन जो भी लगते हैं उनका सफलता पूर्वक प्रबंधन ट्राइको कार्ड के माध्यम से कीटों का हो जाता है जिसमें से बोरर मुक्त रूप से हैं।
1: जी
0: तो जितने भी तरह के तना वेदक हैं अगर प्रति बीघे 6-2 कार्ड 1 बीघे की दर से 3 बार प्रयोग करें,
1: हाँ।
0: एक जुलाई के शुरू में कर दें, एक अगस्त में कर दें, एक सितंबर में और एक अक्टूबर में, 4 बार अगर हम इनका प्रयोग कर दें तो बड़े ही आराम से तना वेदकों का कंट्रोल हो जाता है। बीमारियों की बात करी जाए तो ब्लास्ट एक प्रमुख बीमारी है जिसके कारण किसान भाई बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं हमारे बासमती धान में। इसके लिए ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास के बाजार में बहुत सारे फार्मुलेशन उपलब्ध हैं, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं या राज्य सरकारों के संस्थान हैं, यहाँ से किसान भाई लेकर रेगुलर बीज बोते समय प्रयोग करें, फिर बीज जब रोपाई करें तब प्रयोग करें, और खड़ी फसल में और खासकर जब बालियां निकलने की अवस्था है तो एकाध स्प्रे उस समय कर दें तो आराम से ये बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि बासमती धान में निमेटोड की समस्या भी, जिसमें से रूट नॉट निमेटोड है, इसकी समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जब हम नर्सरी डालते हैं उसी समय अगर ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके नर्सरी डालें और नर्सरी की रोपाई के समय भी ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से ट्रीटमेंट करते हैं, या पेसिलोमाइसिस करके एक बायो एजेंट आता है बाजार में उपलब्ध आता है उससे ट्रीटमेंट करके लगाएं तो निमेटोड का बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो जाता है।
1: तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमें किस तरीके से बीमारियों का और कीटों का नियंत्रण बासमती धान की फसल में करना है। अभी आपने एक बात कही थी कि बासमती धान में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग की बात हम कर रहे थे, तो ये काम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है डॉक्टर साहब?
0: किसान भाई को जैविक उत्पादन तभी सफल हो पाएगा जबकि वह अच्छी गुणवत्ता का अच्छी मात्रा में पैदावार ले ले और उतनी ही मेहनत उसको बेचने पर करे और अपने प्रोडक्ट का लुक देने पर करे। तो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रोसेसिंग जो इकाई है वह नॉर्मल केमिकल वाली इकाई से अलग होनी चाहिए, या अगर वहीं पर कर रहे हैं तो वो थोड़ा साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके लिए हमारी भारत सरकार FPO के माध्यम से बहुत सारा अनुदान भी दे रही है। ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग यूनिट अलग से किसान भाई डेवलप कर सकते हैं अगर समूह में है। हाँ, एक सुझाव और किसान भाइयों का है कि हमेशा जैविक खेती ग्रुप में करें। तो ग्रुप में करने से क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग इकाइयां आप आसानी से FPO या ग्रुप के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार का जो सहायता लेके अनुदान लेके इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इससे आपकी ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं। और पैकेजिंग में विशेष करके ध्यान देना चाहिए, स्पेशल लुक दें, और जो हमारे लोगो हैं चाहे जैविक भारत लोगो हो, चाहे PGS इंडिया का लोगो हो, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी फसाई वाला लोगो हो, वो प्रॉपर तरीके से हमारे पैकेजिंग पर लेबल होना चाहिए।
1: अच्छा, तो देखिए डॉक्टर साहब, आज हमने बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक पर बहुत सारी बातें की हैं। किसान भाइयों ने बड़े ध्यान से हमारी इस बात को सुना भी है। अगर कोई और विशेष सलाह आप इस संबंध में देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
0: हमारा विशेष सलाह किसान भाइयों के लिए यही है कि किसान भाई अगर आपके यहाँ स्कोप है, और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि विदेशों में बासमती धान जैविक तरीके से उगाया गया है उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसको प्रोसेस करती हैं, तो किसान भाई ग्रुप बनाकर ग्रुप के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए

0: विध्वस्त व्यापक रूप पर जैविक बासमती धान को पैदा कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, तो किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दें और सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही बाजार में आप दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर चंद्रभानु जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी बासमती जैविक उत्पादन के संबंध में दी है, आज आपने इस जानकारी को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद और सादर नमस्कार।
2: बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक, इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रभानु, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में। और देखो प्रमोद भैया, आपने फोन पर डॉक्टर साहब से बहुत बढ़िया बातचीत करी है।
3: और भैया देखो, डॉक्टर साहब ने जैविक तरीके से बासमती धान उत्पादन की जो तकनीकें बताई हैं उसको हमारे किसान भाइयों ने नोट कर लिया होगा। और भैया उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें ये भी बताई कि हमें किस तरीके से अपने जैविक उत्पाद का रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे लेबलिंग करनी है और कहाँ हमें उसको बेचना है।
2: बिल्कुल। और देखो भैया, उन्होंने डॉक्टर साहब ने यह भी बताया है कि भैया अगर हम आज से शुरू करते हैं जैविक उत्पादन तो 3 साल बाद, यानी कि भैया यो हमारा पीरियड होता है,
3: बिल्कुल,
2: जब हम तीसरी फसल उसकी लेंगे तो वो हमारी जो है विशुद्ध जैविक उत्पादन होगा भैया।
3: हाँ, तो देखो भाई, हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बासमती की जो फसल है उसको अगर हम जैविक तरीके से पैदा करेंगे तो भैया शुद्ध बासमती पैदा होगी और हमें बढ़िया मुनाफा मिलेगा।
2: बिल्कुल। तो भैया बासमती धान से बढ़िया मुनाफा लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सुनते रहो प्रत्येक मंगलवार को
4: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
5: अरे मास्टर जी।
6: हाँ भैया।
5: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
6: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
5: बिल्कुल। और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
6: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
5: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
7: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
8: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
9: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
10: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
10: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: तो किसान भाइयों, ये आपने सुना बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ 13। और भैया देखो, इस पाठ में आपने बासमती धान की जैविक तकनीकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करी। हमें उम्मीद है भैया कि आप इस बातचीत से ज़रूर लाभ उठावेंगे और अपना जो बासमती धान है उसका बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। और भैया जब बढ़िया उत्पादन मिलेगा तो आपको बढ़िया मुनाफा होगा, अच्छे पैसे आपको मिलेंगे। और भाई बासमती की और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हम भैया देखो प्रत्येक मंगलवार को आपको इस कार्यक्रम को सुनवा रही हैं। आओ अब सुनते हैं ये कुछ संदेश।
11: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
12: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
11: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
12: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
11: डायल कीजिए 8700014242।
12: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देखो भैया ये संदेश हमने सुन लिए। और भाई देखो, हम अपने इस कार्यक्रम में रोजाना आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आए हैं। और भाई चाहे वो जानकारी खेतीबाड़ी की हो, पशुपालन की हो, स्वरोजगार की हो, तो भाई अपने इस कार्यक्रम में हम आपसे रोजाना इन सब विषयों पर बातचीत करते रहे हैं। और भाई जहाँ तक आमदनी को बढ़ाने की बात है, तो देखो हम अपने खेतों में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी प्रजाति लगा हुए हैं और भैया उसकी ठीक तरीके से देखभाल करते रहे हैं, तब जाके भैया कहीं खेतीबाड़ी से हमें 4 पैसे जो हैं वो दिखाई दें। और भाई पैसे की ज़रूरत तो सबको हो गई है, अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारे पास में ज्यादा

पैसे आवे इसके लिए भैया हम अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ जो दूसरे काम हुए हैं उनको भी कर रही हैं। और बहुत सारे तो ऐसे किसान भाई बहन हैं भैया जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम हुए करें, चाहे भैया वो पशुपालन हो या कोई और काम हो, मशरूम उत्पादन हो, ये सारे काम हमारे किसान भाई कर रही हैं। और जहाँ तक पशुपालन की बात है तो उसमें किसान भाई गाय भी पाल रहे हैं, भैंस भी पाल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो भैया बकरी पाल रहे हैं। और भाई तुम तो जानो ही हो कि बकरी को गरीब की गाय भी कहा जावे है। बकरी पालन ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हमारे किसान भाई कम पूंजी में भी भैया शुरू कर सके हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के सामने ये समस्या रहवा है कि भैया पैसे तो कम हैं, हम कोई काम भला कैसे करेंगे। तो अगर हमारे किसान भाई बकरी पालना चाह रहे हैं तो इस काम को किसान भाई बहुत कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं और अपनी परिवार की आमदनी को बढ़ा सके हैं। और भाई पशुपालन हमारे लिए कोई नया काम तो है नहीं, अपनी खेतीबाड़ी के साथ हम पशुपालन कर रही हैं। बस अगर इस काम में हमारे पशुपालक भाई थोड़ी सी तकनीकी जानकारी ले लें, इसका प्रशिक्षण, जैसे बकरी पालन की हम बात कर रहे हैं, बकरी पालने का प्रशिक्षण भी कृषि विज्ञान केंद्रों पर भैया दिया जावे है, या जो दूसरे संबंधित विभाग हैं वहां पर इसका प्रशिक्षण दिया जावे है। अगर हम इस काम को कर लें तो भाई इस काम से हम बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं और ये बहुत अच्छा सिद्ध हो सके है। और भैया देखो, छोटे किसानों के लिए तो बकरी पालन विशेष रूप से बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इनको पालने के लिए कम जगह की जरूरत पड़े है। बस जरूरत इस बात की है कि भैया जो किसान भाई, पशुपालक भाई बकरी पालना चाह रहे हैं वो बढ़िया तरीके से अपना मन बना लें, और भैया अच्छी नस्ल की बकरियों का चयन करने के बाद उनको पालें, उनकी देखरेख ठीक तरीके से करें। और देखो, इससे जहाँ तक फायदे की बात है तो भैया बकरियों से बहुत सारा फायदा हम ले सकते हैं। पहला फायदा तो भैया देखो, बकरियों का दूध बेच के हम अपनी आमदनी को बढ़ा सके हैं, और बकरियों के दूध की समय समय पर बहुत मांग हुआ है। अब तो भैया डॉक्टर भी बकरी का दूध बताने लगे, बकरी के दूध का बहुत अच्छा रेट भी हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को मिली जावे है। तो इस काम को करने में भैया जरा सी भी परेशानी नहीं है, किसान भाई इस काम को कर सकते हैं। और भाई यदि आप बकरी रखना चाहते हैं, बकरी खरीदते समय भैया देखो कुछ हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिससे बकरियां खरीद रहे हैं वो हमें भैया किसी दूसरी नस्ल की जो बकरियां हैं वो हमें दे देते हैं, बताते हैं किसी और नस्ल की निकलती है किसी और नस्ल की। तो जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो इस काम को भैया, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के साथ अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदें। ध्यान रखें कि भाई टाइम टाइम पे अपनी इन बकरियों का हमें जो है टीकाकरण करवाना है, उनको संतुलित आहार भी देना है, और भैया साफ पानी बकरियों को पिलाना बहुत जरूरी होए करे है। हरा चारा, सूखा चारा और आवश्यकता के अनुसार भैया दाना भी हमें इन पशुओं को देने की ज़रूरत पड़े है। समय पर योग्य जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में पशुओं का टीकाकरण करावें, अगर कोई बीमारी है तो अपने इन पशु चिकित्सक की देखरेख में भैया उसका इलाज करावें, ताकि पशु हमारा स्वस्थ रह सके। और भैया देखो, जहाँ तक अपनी इन बकरियों को रखने की बात है तो इनका जो बाड़ा है वो भी भैया हमें साफ रखना चाहिए, गंदगी और नमी से बकरियों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारी बकरियां बीमार हो सके हैं। और भाई देखो, बकरियां हमारे लिए बड़ी जो लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी बेच के हमारे किसान भाई आमदनी कर सकते हैं, दूध बेच के आमदनी कर सकते हैं। और भैया देखो, बकरी पालन करने की अगर आपने ठान ली तो इस संबंध में हमारी सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इन योजनाओं का लाभ भी

0: आप उठा सकते हैं। बस आप बाजार की मांग के अनुसार भैया काम करें, मेहनत करें और अपनी आमदनी को बढ़ावें। भाई देखो, बातचीत तो हो ही रही है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि भैया अब तो मनोरंजन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, देखो बातों के साथ साथ मनोरंजन अगर होता रहेगा तो और भी बढ़िया बात है। तो ठीक है, आओ करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यो रागनी।
1: और चिट्ठी

चिट्ठी पढ़कर नरसी जी की। भाई और रागनी, आपने सुनी ब्रह्मदेव आर्य की आवाज में, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और भैया अब आपको दे देते हैं मौसम के संबंध में जानकारी। और भाई मौसम की यो चिट्ठी हमारे पास में आई है भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भाई इस चिट्ठी के अनुसार बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और शामली और उसके आसपास के अन्य जिलों में 18 से 19 अगस्त तक बिजली, गरज, आंधी और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और भैया किसान भाइयों को सलाह भी दी गई है कि अधिक वर्षा से खेतों में जलभराव हो सकता है, जिससे फसलों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। और भाई अधिक आर्द्रता के कारण धान, सब्जियों और अन्य फसलों में रोगों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। धान में पत्ती झुलसा यानी कि लीफ ब्लाइट और जीवाणु जनित रोग, सब्जियों और अन्य फसलों में फफूंद जनित रोग, तो भैया देखो ये सब रोग लगने की संभावना है, इनसे बचने के प्रयास हमारे किसान भाई करते रहें। और जहां तक गन्ने की फसल की बात है तो भैया गन्ने की फसल के लिए भी इन्होंने सलाह दी है कि गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग यानी रेड रॉट प्रभावित गन्ने के पौधों को जड़ सहित निकाल कर नष्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके खेत में पौधा ऐसा है गन्ने का जिसमें लाल सड़न रोग लग रहा है तो भैया उसको निकाल कर नष्ट कर दें। इसके बाद थायोफेनेट मिथाइल 0.2% घोल का ड्रेंचिंग करें। गन्ने में माइट का प्रबंधन के लिए भैया देखो आप प्रोपरजाइट की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो देखो भैया ये तो थी कृषि से संबंधित सलाह जो आपको मौसम के अनुसार अपने खेतों में काम करना। लेकिन भैया देखो आपको एक और जरूरी काम यो करना कि आपको हमारा यो कार्यक्रम कैसा लग रहा है यो बताने के लिए हमारे पास में चिट्ठी लिखनी। और चिट्ठी लिखने के लिए देखो पता तो आप जानो ही हो, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2 4 6 7 6 3। और भैया अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास में भेजना है तो नंबर है 94570 78 288। इस नंबर पर आप हमारे पास में मैसेज भेज सकते हैं। तो भैया हमें आपकी चिट्ठियों का और व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार रहता है। और भैया अब बात करते

करते करते कार्यक्रम का समय देखो पूरा ही हो गया है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण और प्रस्तुति होगी हमारे आकाशवाणी आगरा की। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम शेरी नशिस्त प्रसारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी शायर होंगे श्री अब्दुल हई, सुश्री मेहनाज खानम, सुश्री दानिश्ता गजल, और इस शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे मेहराज बिजनौरी। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज संध्या 7:32 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे गजलें। कलाकार रहेंगे सनवर अली खान। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा आज शाम 6:50 पर। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात्रि 8:30 और रात्रि 10:30 पर पत्रों व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना प्रसारित होगा कल प्रातः 6:05 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है प्रसारित किया जाएगा कल रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात, यह कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे कल संध्या 7:32 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जानकारी स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन, समय याद रखिए कल प्रातः है 7:05 पर। कल प्रातः 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा गन्ने की फसल की निगरानी। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 7:31 पर। रुहेलखंडी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिन में 9:25 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 11:30। कल दिन में 1:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार संदेश.com। ये कार्यक्रम कल दिन में 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा कल शाम 5:00। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विषय में हमारे श्रोता जानकारी सुन सकते हैं। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन शाम 5:15 पर। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता मवेशियों में लंपी रोग कारण लक्षण और निवारण। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे वार्ता

विषय रहेगा मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:50 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित होगा।

0: विंडो ओपनिंग तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तकनीक में पेड़ की जरूरत से ज्यादा घनी और आपस में उलझी शाखाओं की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर पेड़ के बीच में विंडो यानी खुला स्थान बनाया जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचती है, जिससे धूप से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है और फलदार शाखाओं का विकास बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार विंडो ओपनिंग आम की तुड़ाई के बाद करना बेहतर रहता है। हालांकि एक बार में पेड़ की 15-20% से अधिक हरियाली नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक छटाई से पेड़ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़ी शाखाओं की कटाई भी सावधानी से करनी चाहिए ताकि छाल न फटे। छटाई के बाद कटे हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाने और काटी गई शाखाओं को बाग से बाहर हटाने की सलाह दी जाती है। सही समय और वैज्ञानिक तरीके से की गई यह तकनीक पुराने आम के पेड़ों में नई शाखाओं के विकास, बेहतर फल फूल और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में मदद कर सकती है।
1: सौरभ भैया, देखो ये जो बरसात के मौसम है ना, ये मौसम में हम सब कई तरह की फसल लगाए हैं और वही देखो अपनी गन्ना की फसल भी बढ़वार हो रही है और जरूरी है क्योंकि देख रेख भी करी और देख रेख के भाई बात आओ थे तो हम सब पूरी मेहनत और लगन के साथ ही लग जाते हैं। और यही क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, बता रहे हैं गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। तो आओ हम सब जाना जाए।
2: बिल्कुल जाना जाए और ध्यान से सुना जाए, कोनो जरूरत के बात हो तो कल लिख लीन जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गन्ने की फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
4: नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये एक दो महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है और आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे हैं कि 0238 एक प्रजाति थी जो से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती थी, 7-8 साल से उसकी रोग रोधक क्षमता घटने की वजह से वो बहुत प्रभावित हो रही है लाल सड़न से। तो उस प्रजाति के लिए मेरा एक निवेदन यह है कि किसान भाइयों उसका बावक फसल ही लें और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें। 0.1% के घोल बना के बेवेस्टिन नामक एक फफूद आती है, कार्बन डाइऑक्साइड

0: ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20 मिनट आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है। और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है।
1: इसके अलावा पोका बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब।
0: जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पोका बोइंग आ रहा है और कंडुआ रोग आ रहा है। ये चार बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।
1: इनकी पहचान क्या है?
0: देखिए, लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती हैं जैसे नीचे से काट के चपका दिया गया हो। लेकिन जब पोका बोइंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरिमाहीनता कहते हैं, और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है, इसलिए पत्तियां वत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा एक फफूद निकलता है जो रोग को फैलाने में काम करते हैं। वो फफूद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बैना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन में किसान भाई बहन?
0: निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है
1: 1 ml प्रति लीटर पानी
0: जी जी 1 ml प्रति लीटर पानी में और उसका छिड़काव कर दे। उसके छिड़काव से आपका पोका बोइंग पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं।
1: कुछ जैविक उपाय भी है डॉक्टर साहब?
0: जैविक उपाय में देखिए, हम किसान को सलाह देते हैं कि बीज को ठोक बजा के ले और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करे,
1: बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों में
0: करे।
1: डॉक्टर साहब, कुछ हानिकारक कीट भी इस समय लग रहे हैं बेधक की?
0: जी हाँ, कीट एक बहुत बड़ी समस्या है और गन्ने में बेधक कीट और गन्ने का रस चूसने वाले कीट, ये दो तरीके के कीट ऐसे हैं जो गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेधक कीटों में आप जानिए कि चोटी बेधक सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद तना बेधक आता है और फिर जड़ बेधक आता है।
1: डॉक्टर साहब, इनका प्रबंधन हो कैसे?
0: एक कीटनाशक आता है जो क्लोरेंट्रानिलीपोर, वो 150 ml की एक सीसी आती है, उसको एक एकड़ के गन्ने में उसको जमीन के पास छिड़काव कर दे, ट्रेंचिंग करना है और वो गर्मी के महीने में करना है, मई जून में करना है, तो वो अपने आप फसल को 3 महीने तक के लिए किसी भी बेधक कीटों से वो मुक्ति दिलाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गन्ने में समस्या है इस समय जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उस पे मिली बग नाम का एक कीट आता है,
1: गन्ने को भी नुकसान पहुंचा रहा है,
0: बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि ये नई पत्तियां जो निकलती हैं वहां नहीं होता, पुरानी पत्तियों में सबसे पहले घुसता है, गन्ने से चिपक के अंदर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां से वो रस चूसता है और ऊपर की सारी गोला पीला हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए एक तो पत्ती निकालना पड़ेगा, उसको छील के बाहर फेंकना पड़ेगा और उस पर जो है एक कीटनाशक आता है इमिडाक्लोरपिड, उसका 3 ml 5 लीटर पानी के अनुपात में उसको मिला के उस पर छिड़काव करना है। और इसके लिए एक और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ये छिड़काव कम से कम 45 दिन बाद दोबारा अवश्य करें क्योंकि उसके अंडे जमीन में होते हैं, मेड़ पे होते हैं, एक बार मरने के बाद वो दोबारा फिर से आके गन्ने को प्रभावित करता है।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पायरिला की भी रस चूसक कीटों की भी समस्या है?
0: पायरिला की समस्या तब आती है जब गन्ने में चीनी बनने लगता है और गर्मी की अवस्था में भी कभी कभी आती है, लेकिन पायरिला के लिए एक अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार एक कीट है जो उसको खाता है,
1: यानी पीछे

0: 52।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
0: जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं, बाकी अभी और जो प्रजातियां हैं उनमें 14201, 15201, CO 15023 ये कुछ प्रजातियां हैं और इनके चयन में आप कोई भी प्रजाति को अगर बढ़ाते हैं तो 30% 40% के क्षेत्रफल में ही ले जाएं।
1: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सौरभ भैया देखो, सावन का महीना चल रहा है और भाई देखो, बाजा पे तो हम आपका झूला नहीं झुला सकते, मुला की देखो कजरी के माध्यम से हम आपका झुमा जरूर सकत हैं। तो आवाज सुना जाए यू कजरी पूजा तोमर बहनी के स्वर माँ, तो हम सब झुमा जाए और पंच भैया भी झूमे।

0: देखो सरला बहनी, किसान वाड़ी प्रोग्राम में अपने साथ जो है कोई ना कोई पंच भाई जुड़त हैं, जो अपनी फसल का लगा रहे हैं उसके बारे में बतावत हैं, तो वह क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलजिंदर सिंह भैया, जो जानकारी दे रहे हैं वर्टिकल सिंगल वर्ड से गन्ना के उत्पादन कैसे की जाए, तो इसका सुना जाए और भैया के अनुभव जाने जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के नकहा ब्लॉक के शीतलापुर गाँव के गन्ना उत्पादन से जुड़े दिलजिंदर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं।

0: कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
1: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं करीब 20 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता हूँ।
0: पूरे परिवार की सम्मिलित जमीन?
1: परिवार की 20 एकड़ जमीन पर हम खेती करते हैं।
0: तो इसमें कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
1: प्रमुखता से हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के बीज का उत्पादन करते हैं। तो 75% खेत यानी कि करीब 15 एकड़ के करीब हमारे पास गन्ने के बीज लगे हुए हैं।
0: कुछ खास तरीका अपनाते हैं गन्ने के बीज उत्पादन में?
1: गन्ने के बीज क्योंकि कुछ वैरायटियों के जाने के बाद गन्ने के बीज में बहुत भारी कमी आई, तो हमने वर्टिकल सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करनी शुरू की। इसमें हम कम बीज में और कम लागत में अधिक गन्ने की पैदावार कर पा रहे हैं।
0: तो जो सिंगल बड है और ये वर्टिकल सिंगल बड, इसमें क्या फर्क है?
1: जो सिंगल बड विधि है वो बहुत समय से कई सारे किसान भाई करते आ रहे हैं। सिंगल बड को वर्टिकल बोने का अर्थ यह है कि पारंपरिक तरीके में गन्ने की जो बड होती है उसको जमीन पे लटाया जाता है, और जो सिंगल बड वर्टिकल विधि है, वर्टिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब हम गुल्ली या गन्ने की बड को खड़ी करके बुआई करते हैं,
0: यानी ऊपर की तरफ,
1: उसको हम ऊपर की तरफ खड़ी करके मेड़ के किनारे उसकी बुआई की जाती है।
0: तो क्या पहले आप किसी पॉलिथीन में इसको जमाते हैं?
1: इसकी बुआई डायरेक्ट होती है खेत में।
0: अच्छा,
1: इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी तैयार करने में भी अतिरिक्त खर्चा लगता है, लेबर लगती है। हम इसकी बुआई सही समय पे डायरेक्टली खेत में ही करते हैं।
0: यानी सिंगल बड गन्ने के जो बीज है उससे निकाल लेते हैं और उसकी सीधी बुआई करते हैं?
1: जी, इसकी कटाई भी एक विशेष रूप से की जाती है। ये गन्ने की कटाई जड़ की तरफ से शुरू करते हैं काटना, और ऊपर जो उसके पलई की तरफ हम गन्ने की कटाई करते हुए चलते हैं,
0: ऊपरी हिस्से
1: की तरफ चलते हैं, तो जो गांठ के नीचे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा कम काटा जाता है, और गांठ के ऊपर, आंख के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। ग्रेविटी की वजह से जब हम बड को लगाते हैं जमीन पे
0: जी,
1: तो उसका जो भोजन होता है उसकी ऊपर वाली इंटरनोड में होता है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जब तक बड अपनी जड़ें नहीं बना लेती है तब तक उसको भोजन उसी बड की इंटरनोड से मिलता रहता है। उसके बाद जब बड चल जाती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं, तो वो अपना पोषण जो है वो जमीन से लेना शुरू करती है।
0: तो इस साल आपका कितना रकबा है बीज उत्पादन का?
1: हमने करीब इस समय 12 एकड़ जमीन पे बीज उत्पादन वाला गन्ना बोया हुआ है, और बाकी जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई के लिए चला जाता है।
0: तो इसमें कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
1: जो वर्टिकल सिंगल बड विधि से हम गन्ना बोते हैं, ये वो वाले गन्ने बोए जाते हैं जो नए बीज इस समय रिलीज होके आते हैं।
0: अच्छा।
1: और जिनकी मात्रा बहुत कम गिनती है,
0: उसको बढ़ाते हैं।
1: उसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो वर्टिकल सिंगल बड विधि से है। अगर हम इसको 4.5x2 फुट पे 1 एकड़ खेत में लगाते हैं तो हमारे सिर्फ 4750 बड 1 एकड़ खेत में लगते हैं, जो करीब करीब हमें 4 क्विंटल गन्ने से मिल जाते हैं।
0: और जबकि पूरा गन्ना का टुकड़ा बोने पर उसके बीज की मात्रा काफी,
1: उस समय जब हम पूरे गन्ने से बीज बना के बोते हैं तो हमारे पारंपरिक तरीके में करीब 25 से 35 क्विंटल तक का बीज लग जाता है
0: प्रति एकड़। तो कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना बीज आपके पास है?
1: हमारे पास वो बीज हैं जो रिलीज हो चुकी वैरायटीज हैं,
0: जैसे
1: IISR लखनऊ से 16202, हमारे शाहजहानपुर इंस्टीट्यूट से जो हमें बीज मिलते हैं 17231 है, 18231 है। इन वैरायटियों का हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं।
0: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की जो नई वैरायटी है, उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं अपने खेत?
1: इस समय ये वैरायटियां बिल्कुल नई निकली हैं और इनका उत्पादन तो समय के साथ धीरे धीरे, जब ये हमारी जमीनों में अडाप्ट करेंगी 2-3 साल बाद ये अपने चरम पे पहुंचेंगी जिसमें ये अपना पूरा उत्पादन देंगी। अभी इस समय ये रिकवरी के पक्ष से बहुत बढ़िया वैरायटियां हैं और ये अभी रोग से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो अच्छी हैं,
0: यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी है और चीनी मिल के लिए रिकवरी भी अच्छी है।
1: चीनी मिल के
0: डिमांड भी होगी
1: जी, उनकी डिमांड की वैरायटी है। उत्पादन के लिए अभी किसान भाइयों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है। हर वैरायटी जलवायु के हिसाब से जब अडाप्ट करती है तो 1 से 2 साल के बाद ये अपना पूरा उत्पादन देने लग जाती है।
0: तो इस साल शरदकालीन गन्ने की बुआई का रकबा कितना होगा?
1: इस समय हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की हमने शुरुआत कर दी है।
0: अच्छा, अभी से?
1: वर्टिकल सिंगल बड का सबसे उत्तम समय जो है वो ये समय है,
0: अगस्त
1: के महीने से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और आप सितंबर के आखिर तक इसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम बीज में। उससे बाद जब

0: हम और आगे लेट करते हैं तो हमें बीज की जो दर है वो बढ़ानी पड़ती है।
1: तो कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखते हैं बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और खड़ी फसल की देखभाल?
0: तो वर्टिकल सिंगल बड विधि जो है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सिंगल बड तो काफी सालों से किसान भाई करते आ रहे हैं, वर्टिकल सिंगल बड में हम लोगों ने जो गन्ने का उत्तम समय है बुआई का कुदरत की तरफ से जो निर्धारित है वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाता है और आप सितंबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें आप कुदरत के अटल नियमों के हिसाब से गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
1: जैसे
0: आप पूर्व पश्चिम की कूड बनाए जाते हैं या बेड बनाए जाते हैं और जो दक्षिण की तरफ बेड की ढलान होती है उसके ऊपर गन्ने का बीज लगाया जाता है, जिसका एक विशेष कारण है कि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी में धूप, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो धूप बहुत पसंद करती है, उसको बहुत लंबे समय के लिए धूप चाहिए होती है और क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सर्दियों का समय जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उस समय के लिए हम जब दक्षिण वाली बाही पे जब इस पे लगाते हैं गन्ना तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप मिलती है, तो इससे गन्ने की जो बढ़वार है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमको इसको जमीन के अंदर नाली के अंदर लटा के नहीं लगाना, हम इसको थोड़ा सा गन्ने की मेड़ के बेड के किनारे उठा के गन्ने को लगाते हैं ऊंची जगह पे, जिसमें कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो गन्ने की फसल के नीचे रहता है और गन्ना अपनी जरूरत के अनुसार पानी या नमी को लेता रहता है,
1: यानी अपनी प्यास बुझा लेता है,
0: बुझाता है और वो कभी भी पानी की वजह से स्ट्रेस में नहीं आता।
1: और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
0: जब हम उसको कम पानी देते हैं या पानी की जो स्ट्रेस से उसको बचा लेते हैं गन्ने को, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप मिट्टी से पूरी करता है।
1: आप प्रति एकड़ कितनी कार्बनिक खादें देते हैं, कितनी रासायनिक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन में?
0: हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल अवशेष जो है वो खेत से बाहर नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है, हर फसल अवशेष को हम खेत में ही जोत के उसकी मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हरी खाद की बिजाई हर साल करते हैं, जिससे कि हमारे कार्बनिक जीवांश जो है वो खेत में भरपूर रहे, जिसकी वजह से हमें रासायनिक खादों पे हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो तंदुरुस्त रहती है, रोग कम लगते हैं और आपका जो खादों पे हमारा निर्भरता है वो कम हो जाती है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन का या गन्ना उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मिठास की फसल की खेती करना चाहते हैं?
0: देखिए, आज तक के जितने भी मेथड हैं गन्ने की बुआई के सभी कामयाब हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। सिंगल बड वर्टिकल मेथड जो है वो किसान भाइयों को अभी उनके लिए नया है, तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले इस विधि को समझें, कम रकबे में अपने खेत में इसकी शुरुआत करें और इसके बाद जब एक बार उसको समझ लेंगे तो उसके बाद इसको वो बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: चलते चलते सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको अपनाइए, कम रकबे पे इसको करिए, इसको समझिए और इससे लाभ उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम अपने खेतों में कर रहे हैं।
1: दिलजिंदर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल उगा रहे हैं जिसमें ज्यादातर रकबे में वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम हो रही है, आपका उत्पादन अधिक मिल रहा है और आपको मुनाफा भी अधिक मिल रहा है। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।

0: में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: सरला बनी।
4: हाँ जोर भैया।
3: देखो अपन पंच भाई जौन है, मौसम की जानकारी के बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहे कि समय मौसम ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब पानी बरसा लगा है, पता नहीं कब धूप निकल आ हुआ, तो इसलिए जरूरी है कि अपने पंच भाई के मौसम की जानकारी आप उपलब्ध करा दो।
4: बिल्कुल भैया, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनों के बरसात के पूर्वानुमान यह प्रकार से है। आज यानी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। यूं भैया रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़े की संभावना है, और कुछ स्थानों पर तेज बौछार पड़े की संभावना है।
3: सरला बहनी देखो, हम उनके यू प्रोग्राम तो अपन पंच भाई सुनत हैं, लेकिन साथ में अगर भी कोई सुझाव देवैया हैं, कोई विशेष विषय पर जानकारी लेवैया हैं, तो ये अपना पत्र हम लोगों के यहाँ लिख सकते हैं, ताकि उनकी पार्टी के माध्यम से ने जो बात है वह हम लोगों तक पहुंच जाए।
4: और भैया चिट्ठी पाती लिखे खातिर हमारा पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001, और यह पता पे चिट्ठी पाती जरूर लिखा है।
3: और अगर ईमेल करिया हो तो हमारी ईमेल आईडी का है, वहाँ अपने पंच भाई क्या बता दो।
4: और भैया मेल करा चाहत है तो हमारा पता है farmandhomeairlko@gmail.com, यह पता पे मेल जरूर करें। और सौरभ भैया अब बैठके के समय हो रहा है समाप्त, तो पंच से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय आरक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पीआरडी जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया। श्री योगी ने प्रांतीय आरक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय आरक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है।
1: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है।
0: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री, राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2017 से पहले पीआरडी का बजट मात्र 2300 रुपए था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और जापान प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल विकास, एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में नए आयाम तलाशने के लिए एकजुट हो रहे हैं। गृह विभाग ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहली गठित विशेष जांच दल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने यह रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहली एसआईटी का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित दूसरी जांच टीम की जांच अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने

0: तथा पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चहवाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अखिल चौराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरु मैनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टेली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कल देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 मजदूर घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मृतक मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि गंगा में नावों का संचालन फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सचेत कर रही है।
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज 66.90 मीटर लेवल है और अभी भी 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। नाविकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ साथ में पूरे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन।

पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले दो दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं गजलें। कलाकार हैं सनवर अली खान।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे हैं। कलाकार हैं सनवर अली खां। कार्यक्रम में सुनते हैं ये गजल।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे हैं। कलाकार हैं सनवर अली खां। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गजल।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। इसमें आज आपने सनवर अली खां से गजलें सुनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण, प्रस्तुति होगी आकाशवाणी आगरा की। शेरी नशिस्त ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं आज रात्रि 9:30 पर। प्रतिभागी शायर होंगे श्री अब्दुल हई, सुश्री मेहनाज खानम, सुश्री दानिश्ता गजल, और शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे मेराज बिजनौरी। आपसे कुछ ही देर बाद रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या, और रात्रि 8:30 बजे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 10:30 पर पत्रों व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हमारे श्रोता सुन सकेंगे। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम में सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू के युगल स्वर में फिल्म बलमा का ये गीत। शब्द रचना इस गीत के लिए है समीर की और संगीत है नदीम सरवण का।

श्रोताओं, अभी आपने आशा भोसले और कुमार सानू को सुना फिल्म बलमा में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म प्रेम रोग में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने लता मंगेशकर और सुरेश वाडिकर को सुना फिल्म प्रेम रोग में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं।

कार्यक्रम में सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म साजन में। गीत समीर ने लिखा है और संगीत नदीम शर्मा ने तैयार किया है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या में आप सुनते हैं फिल्म बादल का ये गीत। शब्द रचना इस गीत के लिए समीर की है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और गायक कलाकार सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादल में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। शब्द रचना गीत के लिए महबूब की है और संगीत इस्माइल दरबार का है। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त लोकेंद्र। श्रोताओं कार्यक्रम में आज एक ही

से में हम आपको सुनाएंगे फिल्म दीवाना के कुछ गीत। कार्यक्रम का ये गीत सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वर में। गीत समीर का है और संगीत नदीम सरवण का है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज आप फिल्म दीवाना के कुछ गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम को।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर को। शब्द रचना गीत के लिए समीर की है और संगीत नदीम सरवण का है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने फिल्म दीवाना के कुछ गीत सुने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल

0: में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर

0: के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है, और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
3: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने

0: ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former

खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है और ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आज एक बार फिर इआदा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वुज़रा की 12वीं मीटिंग के इख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिये में आज कहा गया है कि ब्रिक्स ममालिक पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मौसर अमल आवरी में पेशरफ्त, आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस माहिदे के तहीं अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तियाबी समेत बैनुल अक्वामी तआवुन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सकें और साथ ही पायदार तरक्की और गुरबत को जड़ से ख़त्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और उनके बाहर भी, जिसमें जुनूब जुनूब तआवुन के जरिए भी तआवुन और शराकत दारी शामिल है, से अवाम मरकूज अंदाज नज़र के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मज़ाहिमत इख्तिराआत तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वुज़रा ने पायदार तरक्की का अहल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क्यादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया। इससे कल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई अवाम मरकूज पायदार और तरक्की पजीर ममालिक के हकाइक के तई जिम्मेदार होनी जरूरी है। वजीर मौसूफ ने उभरते हुए आलमी माहौलियाती चैलेंजेस को उजागर किया और उनसे निमटने के लिए ब्रिक्स के मजबूत तआवुन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की ब्रिक्स सदारत के लिए 4 तरजीहात: पायदार तर्ज जिंदगी का फरोग, शजरकारी, जंगलात में आग का बंदोबस्त और कुदरती आफत की सूरत में मज़ाहिमत, सर्कुलर मईशत और ततबुख का खसूसी तौर पर जिक्र किया। भारत ने आज कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी और वसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शिनाख्त की कमी के मुतालिक उनके बयान के हवाले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तर्जुमान ने कहा कि भारत के इंतखाबी निज़ाम में मुस्तकिल अपनी मजबूती और भरोसेमंदी का मुजाहरा किया है। इन खबरों से मुतालिक कि भारत को बांग्लादेश से तवानाई की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जनाब जायसवाल ने बताया कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ तवानाई का एक जारी सिलसिला रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इजाफी दरख्वास्त का ताल्लुक है, भारत अपनी जरूरियात, रिफाइनिंग की सलाहियत और अपनी जानिब से दस्तियाबी को पेश नज़र रखते हुए उसका जायजा ले रहा है। शहजाद भट्टी दहशतगर्दी के नेटवर्क के बारे में भारतीय दावों के तई पाकिस्तान के रद्द अमल पर तर्जुमान ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के मामले को इंतहाई संजीदगी से लेता है। जनाब जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने की भारत की लड़ाई जारी रहेगी और दहशतगर्दी की इस लानत को शिकस्त देने के ताल्लुक से जिस किस्म की भी कार्रवाई दरकार होगी, भारत वो कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में एहतिजाज के मुतालिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वहाँ कई जानें तलफ हुई हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनों को खोया है और ज़ख्म खाए हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया और रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि सूरत हाल इस तरह की है कि मकामी आबादी को बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से हमदर्दी और यगानगत की ज़रूरत है और वो इसकी मुस्तहिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एक साबिक डीजीपी और सीबीआई के एक साबिक डायरेक्टर पर मुश्तमिल इंतहाई बा इख्तियार कमेटी तश्कील देगी जो दिल्ली में हालिया एहतिजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और पुलिस अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जामात का जायजा

0: भागूवाला से आज तशरीफ़ रखते हैं। इस बज़्म की इब्तदा करते हैं और पहली शायरा से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच महनाज सिवारवी तशरीफ़ रखती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, वो अपने कलाम से नवाजे। मोहतरमा महनाज सिवारवी साहिबा,
1: सभी हजरात को आदाब। गज़ल का मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाज फरमाए कि सुनहरे ख्वाब आँखों में सजाना कितना मुश्किल है।
0: वाह।
1: सुनहरे ख्वाब आँखों में सजाना कितना मुश्किल है, हमें मालूम है मंजिल का पाना कितना मुश्किल है।
0: क्या कहने?
1: हमें मालूम है मंजिल का पाना कितना मुश्किल है, लबों को सीतलू लेकिन मेरा चेहरा बता देगा।
0: वाह।
1: लबों को सीतलू लेकिन मेरा चेहरा बता देगा, ये दर्द दिल जमाने से छुपाना कितना मुश्किल है।
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत शुक्रिया। यहीं से एक मतलब शेर पेश करती हूँ। हमेशा उसके होठों पर हंसी महसूस होती है।
0: क्या अच्छा मिश्रा है।
1: हमें

0: करती है। बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों से पढ़कर खुशी महसूस होती है।
1: बहुत।
0: और गजल का मकता पेश खिदमत है।

0: क्या
1: अच्छा है,
0: क्या
1: वाह। हर घड़ी मेरे ख्यालों में बसा रहे
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने,
2: बहुत अच्छी,
0: वाह वाह वाह।
1: और

0: बहुत अच्छे, वाह
1: वाह, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ, समाप्त करें कि वक्त इंसान को जब कोई सजा देता है,
2: वक्त इंसान को जब कोई
1: वक्त इंसान को जब कोई सजा देता है, गैर तो गैर है अपना भी दगा देता है।
2: क्या कहने,
1: गैर तो गैर है अपना भी दगा देता है, और उसकी तारीफ को अल्फाज कहाँ से लाऊं, उसकी तारीफ को अल्फाज कहाँ से लाऊं, जुल्म सहकर भी जो जालिम को दुआ देता है, जुल्म सहकर भी जो जालिम को दुआ देता है।
2: आप समाप्त कर रहे थे, आप सुन रहे थे मोहतरमा मेहनाज सिवारवी को। मेहनाज सिवारवी साहिबा के बाद अब हम चलते हैं सरजमीन मेरठ, और मेरठ से हमारे बीच एक शायरा हैं जिन्हें दानिश गजल के नाम से जाना जाता है। दानिश गजल के लिए मैं इतना कहूँगा, शकील जमाली कहते हैं कि वफादारी पे आफत आ रही है, वफादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। मोहतरमा दानिश गजल साहिब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। खिजा से हमने ही फसले बहार मांगी है,
2: बहुत अच्छा है।
3: खिजा से हमने ही फसले बहार मांगी है, कि एक सांस कजा से उधार मांगी है।
2: बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
3: जमीनी खेतों की गिरवी रखी है बाबा ने,
2: क्या अच्छा मिश्रा है, वाह।

0: क्या कहने, वाह वाह वाह,
1: क्या कहने, मोहब्बत में इतनी भी पागल,
2: बहुत अच्छा है,
1: वाह वाह वाह वाह। और मतलब दो तीन शेर, बिछड़ के तुझसे कहीं एतकाफ क्या होगा, हमारे दिल में कोई अब शिगाफ क्या होगा।

0: मिला चुका है वो अब हाथ मेरे दुश्मन से, मिला चुका है वो अब हाथ मेरे दुश्मन से, अब इससे बढ़ के वो मेरे खिलाफ क्या होगा, अब इससे बढ़ के वो मेरे खिलाफ क्या होगा। खुदा नहीं हूँ मैं बस एक बिनते हवा हूँ, खुदा नहीं हूँ मैं बस एक बिनते हवा हूँ, गुनाह तेरा ये मुझसे मुआफ क्या होगा, गुनाह तेरा ये मुझसे मुआफ क्या होगा। ये चेहरा मेरा अगर पढ़ सको तो तुम पढ़ लो, ये चेहरा मेरा अगर पढ़ सको तो तुम पढ़ लो कि मुझसे गम का मेरे इंकशाफ क्या होगा। और एक मतलब दो तीन शेर तरन्नुम से के, कहा कब ये मैंने तुमसे मुझे माहताब भेजो,
1: बहुत अच्छा।
0: कहा

0: है अभी।
1: क्या बात,
2: बहुत अच्छा है।
0: इश्क की ये तो इब्तिदा है अभी। और आखिरी शेर, इश्क आँखों में ठहरते ही नहीं,
2: इश्क आँखों में ठहरते,
0: इश्क आँखों

0: है तुम्हारे पाँव की खुशबू से है मुअत्तर वो, तुम्हारे पाँव की
1: खुशबू से
0: खुशबू से है मुअत्तर
1: मुअत्तर वो,
0: वो, हमारे रूम में जो पायदान रखा
1: क्या
0: है।
1: बात
2: क्या
1: है,
2: कहने, वाह
0: तुम्हारे
1: क्या
0: पाँव की
1: काबिल
0: खुशबू से
1: इस्तेमाल
0: है
1: किया, वाह
0: मुअत्तर वो, हमारे रूम में जो पायदान रखा है। कोई दुखी है बुलंदी पे देखकर मुझको,
1: कोई दुखी
0: कोई दुखी है
1: बुलंदी
0: बुलंदी पे देखकर मुझको, किसी ने नाम मेरा आसमान
1: क्या
0: रखा है।
1: बात है,
2: क्या
1: वाह
2: कहने,
0: किसी ने
2: वाह
0: नाम मेरा
1: अच्छी
0: आसमान
1: शेर पढ़
0: रखा
1: रहे
0: है।
1: माशाल्लाह, वाह
0: कोई दुखी है बुलंदी पे देखकर मुझको, किसी ने नाम मेरा आसमान रखा है। वो झूठ क्या है जरा मैं भी तो सुनूं आखिर,
1: वो
0: वो
1: झूठ क्या
0: झूठ
1: है।
0: क्या है जरा मैं भी तो सुनूं आखिर, कि जिसने मुझसे तुम्हें बदगुमान रखा है।
1: वाह वाह
0: वो झूठ क्या है जरा मैं भी तो सुनूं आखिर, कि जिसने मुझसे तुम्हें बदगुमान रखा है। किसी अमीर ने कूड़े में फेंक दी मेराज,
1: किसी
0: किसी
1: अमीर ने
0: अमीर ने
1: कूड़े में फेंक
0: कूड़े
1: दी,
0: में फेंक दी मेराज, किसी गरीब ने रोटी कमान रखा है।
2: क्या कहने,
0: किसी
2: वाह वाह
0: गरीब
2: वाह
0: ने रोटी
1: बहुत उम्दा।
0: कमान रखा है। आइए एक गजल और कहता हूं, कि काम अच्छा है तू नहीं करता,
1: काम अच्छा
2: काम
1: है तू नहीं
0: काम
1: करता,
0: अच्छा है
1: तू नहीं करता,
0: तू नहीं करता, आईना रूबरू नहीं करता।
1: वाह
2: वाह
0: काम अच्छा है तू नहीं करता, आईना रूबरू नहीं करता, तेरी गीबत करेंगे कैसे दोस्त,
1: तेरे
0: तेरी
1: गीबत,
0: गीबत करेंगे कैसे दोस्त, तेरी गीबत अदू नहीं करता।
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: तेरी गीबत करेंगे कैसे दोस्त, तेरी गीबत अदू नहीं करता। ये शेर खास तौर पर मिट्टी जैसा ही है चांदी का चराग, मिट्टी जैसा
1: क्या
0: ही
1: नहीं है,
0: है
1: चांदी का
0: चांदी का चराग, रोशनी फालतू नहीं करता।
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: कहने,
0: मिट्टी
2: वाह वाह
0: जैसा ही है चांदी का चराग,
1: रोशनी
0: रोशनी फालतू
2: फालतू
0: नहीं
2: नहीं
0: करता,
2: करता,
0: रोशनी फालतू नहीं करता, उसकी तारीफ करता रहता है,
1: उसकी
0: उसकी
1: तारीफ
0: तारीफ
2: करता
0: करता
2: रहता है,
0: रहता है, आईना गुफ्तगू नहीं
2: क्या
0: करता।
2: बात है,
0: क्या कहने, उसकी
2: वाह वाह,
0: तारीफ करता रहता है,
1: आईना
0: आईना
1: गुफ्तगू
0: गुफ्तगू
2: नहीं
0: नहीं
2: करता,
0: करता, सुई धागा हो चाहे सोने का, सुई
1: आईना
0: धागा हो चाहे
1: चाहे
0: सोने
1: सोने का,
0: का, जख्मे दिल को रफू नहीं करता।
2: क्या
1: क्या
2: कहने,
1: बात,
0: सुई
1: वाह
0: धागा
1: शेर,
0: हो
1: वाह
0: चाहे
1: वाह
0: सोने का,
1: अच्छा है,
0: जख्मे दिल को रफू नहीं करता, मैं फकत शेर कहा करता हूँ,
1: मैं फकत
0: मैं फकत
1: शेर कहा
0: शेर
1: करता
0: कहा
1: हूँ,
0: करता हूँ, दाद की आरजू नहीं करता।
1: हाँ
2: क्या
1: क्या
2: कहने,
0: मैं फकत शेर कहा करता हूँ, दाद की आरजू नहीं करता।
1: सच्ची बात,
0: जहाँ बचाने को हर कोई मेराज, जहाँ बचाने
1: बचाने
0: को
1: को
0: हर
1: हर
0: कोई
1: कोई
0: मेराज,
1: मेराज,
0: दान अपना लहू नहीं करता।
1: वाह
2: वाह
0: दान अपना लहू नहीं करता। आइए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे बीच इस प्रोग्राम में मेहनाज सिवारवी सिवारा से मौजूद थी, दानिश गजल मेरठ से मौजूद थी, मैं मेराज बिजनौरी बिजनौर से था, और अब्दुल हई सबा साहब हमारे बीच भागु वाले से थे।
3: अभी आप शेरी नसीब से सुन रहे थे, प्रतिभागी शायर थे श्री अब्दुल हई, सुश्री मेहनाज खानम, सुश्री दानिश्ता गजल, और संचालन कर रहे थे मेराज बिश्नोरी। हम आकाशवाणी 47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर बाद हमारा अगला प्रसारण होगा।
4: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार मैं सुंदरम तिवारी। आज के अंक में आप सुनेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की खेल नीति से बदलता खेल परिदृश्य विषय पर उप क्रीड़ाधिकारी देवी प्रसाद से की गई बातचीत, और प्रयागराज के उभरते प्रतिभावान पोलवार्ड खिलाड़ी आर्य देव तथा शॉर्टपुट खिलाड़ी नवीन यादव से भेंटवार्ता।
5: एक बड़ी आम चर्चित या यूं कहे कि लोग कोकती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के दौर में ये कहावत उतनी समीचीन नहीं बैठती, क्योंकि खेल की दुनिया में आजकल सफलता के मायने अलग ही हो गए हैं। भारत में क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जो हैं उनकी क्षेत्र में खिलाड़ियों की और उन तमाम निवेशकों की सफलताओं के मायने बदले हैं, और भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस समय खेल के प्रति जागरूक हुआ है, और न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ाव हुआ है। भारत सरकार ने भारत में खेल की स्थिति सुधारने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का निर्माण किया। 2017-18 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण स्तर पर और जो निचले तबके के लोगों को खेल से जोड़ना और उसके प्रति जागरूक करना। भारत

0: बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: तो देवी प्रसाद जी, आप उप क्रीड़ा अधिकारी हैं और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पोस्टेड हैं। किस तरह देखते हैं आप खेलो इंडिया कार्यक्रम को, किस तरह से इसने खेल की दशा ग्राउंड लेवल पे बदली है?
1: जब से खेलो इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया 2017 और 18 से,
0: जी
1: तब से फर्स्ट टाइम था, उतना जागरूकता नहीं था खिलाड़ियों को, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है उस कार्यक्रम के बाद फर्स्ट टाइम 14 गेमों को स्टार्ट किया था। उस समय स्कूल गेम्स के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था।
0: अच्छा
1: उसके बाद जब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो उसके बाद ग्रामीण अंचलों से लड़कों ने उस कार्यक्रम में, जो जो लड़कों ने मेडल किया उसको 1,000 पूरे देश से लड़कों को चयन किया गया
0: अच्छा
1: और 10,000 पर मंथ स्टार्ट किया गया था कि लड़के आगे चल के अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें और देश के लिए मेडल दें
0: 10,000 रुपए पर
1: पर
0: मंथ
1: मंथ
0: की स्कॉलरशिप दी गई उनको।
1: स्कॉलरशिप।
0: अच्छा
1: उसमें हमारे प्रयागराज से कई लड़कों, विपिन कुमार सिंह थे और थे, दो तीन लड़के थे जो उनको स्टार्ट हुआ था।
0: स्टार्ट हुआ जी।
1: आज वो प्रेजेंट टाइम में सब नौकरी में है, खेलो
0: अच्छा
1: इंडिया की देन है। और उसी से फिर बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में
0: अच्छा
1: दिव्यांग पैरा ओलंपिक भी खेलो इंडिया में शामिल हो गया, जिसका इस समय 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है।
0: जी
1: उसमें हमारे प्रदेश से भी लड़के प्रतिभाग किए हैं। और खेलो इंडिया स्कीम को देश के प्रत्येक जनपद में,
0: जी
1: हमारे यहाँ भी उसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया के तहत एक एक खेल को
0: जी
1: विकसित करने के लिए भारत सरकार के जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत से उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है। इसे
0: अच्छा
1: हमारे प्रयागराज में खेलो इंडिया के तहत लॉन टेनिस का कैंप चल रहा है, जिसमें हम
0: अच्छा
1: लोग 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसमें हम लोग चयन करते हैं, जिससे कि हम उन बच्चों का
0: जी
1: चयन करके स्पोर्ट्स कॉलेज, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो नियम है, जो खेला स्थापनाएं हैं, जिसे स्पोर्ट्स कॉलेज एक स्पोर्ट्स छात्रावास जिसमें हम
0: अच्छा
1: लोग चयन कर सकें।
0: चयन कर सकते हैं। देवी प्रसाद जी, ये बताइए कि आपके मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जो
1: जी
0: छात्र आते हैं, है ना, तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले कोई छात्र अगर, या कोई सामान्य एक लड़का इच्छुक है किसी खेल में जाने के लिए, तो कैसे वो एडमिशन पा सकता है आपके कॉलेज में?
1: हम लोग का नया सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है
0: अच्छा
1: और 1 साल के लिए उसका चलता है।
0: जी
1: फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही प्रक्रिया होती है।
0: अच्छा
1: उसमें हम लोग कम एज के बच्चे, जैसे जिम्नास्टिक है 7-8 वर्ष के बच्चे,
0: जी
1: ताइकांडो है, या इस तरह के जो छोटे बच्चों के गेम है जिसमें
0: हाँ
1: 6-7 वर्ष, ताइकांडो हो गया, जूडो हो गया, जिसमें वो सब बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इससे एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती हो गया, फुटबॉल हो, उसमें 9-10 साल के बच्चे, उन नए बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। हमारा काम है कि एक तो आवासीय छात्रावास के लिए,
0: हाँ
1: एक स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारा मेन है,
0: अच्छा
1: स्पोर्ट्स जो यूपी का अपना जो मेन है, स्पोर्ट्स कॉलेज में हम लोग कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं,
0: अच्छा
1: जिसमें खिलाड़ियों की आयु 9 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वो कक्षा 6 के लिए होता है। तो उसमें जो हमारी सुविधाएं हैं, बच्चे का एडमिशन होने के बाद फीस, पूरा उनका ड्रेस, स्पोर्ट्स किट,
0: जी
1: पढ़ाई लिखाई सब आवासीय एक कैंपस के अंदर होता है,
0: ठीक है,
1: उनको कहीं बाहर जाना नहीं है। और एक हमारा आवासीय छात्रावास व्यवस्था है जो 12 वर्ष के ऊपर, मतलब अंडर 15, 15 वर्ष से कम आयु की, जो कक्षा 9 में एडमिशन होता है, तो उसका चयन प्रणाली में यह है सिस्टम की बच्चा अभी, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब खेल साथी पोर्टल पर बच्चा फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है,
0: ऑनलाइन अप्लाई करें और फिर
1: हाँ
0: चयन किया। तो जब किसी बच्चे को आप चयन करते
1: जी।
0: हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कि क्या कोई लिखित परीक्षा होती है या सिर्फ आप ग्राउंड पे उसका टेस्ट लेते हैं उस
1: नहीं, हम लोग
0: संबंधित खेल से?
1: फिजिकली सर ग्राउंड पर ही लेते हैं, ओवरऑल
0: अच्छा
1: कुछ उनका देखते हैं कि IQ क्या है, किसी चीज को अगर टेक्निक को पकड़े तो कितना जल्दी पकड़ सकता है, IQ उसकी जैसे है तो उसको उस गेम के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज हम लोग उनका बैटरी टेस्ट रखते हैं।
0: अच्छा बैटरी टेस्ट क्या होता है?
1: बैटरी टेस्ट में उसमें हम लोगों ने 100 मीटर है,
0: अच्छा
1: शटल रन है, मेडिसिन बॉल थ्रो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और 800 मीटर है। उसमें
0: अच्छा
1: हम लोग इसलिए टेस्ट लेते हैं कि जिसे उसका 100 मीटर स्पीड चेक करते हैं,
0: अच्छा
1: क्योंकि स्प्रिंटर बाई बर्न होता है, अगर अगर मान लीजिए ऑलरेडी अच्छा भाग रहा था इसका मतलब उसको लोग स्प्रिंट इवेंट में ला लेते हैं।
0: अच्छा
1: एक एजिलिटी टेस्ट है जिसको शटल रन कहते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है लेग स्ट्रेंथ के लिए, मेडिसिन बॉल थ्रो है आर्म स्ट्रेंथ के लिए, 800 मीटर उसके इंड्योरेंस और ऑक्सीजन कैपेसिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो इससे हम लोग को लगता है कि बच्चा किस इवेंट में कर सकता है, अगर देखते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं अच्छा कर पाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा पढ़ाई में ठीक हो तो पढ़ाई की तरफ जाओ,
0: अच्छा
1: हाँ
0: फिर
1: अगर
0: समय
1: फिजिकल के लिए करना है तो आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप उतना नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि आप स्पोर्ट्स न करो,
0: हाँ
1: लेकिन
0: स्पोर्ट्स न
1: शारीरिक
0: करिए,
1: मानसिक और स्वास्थ्य रूप के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स से जुड़ना बहुत जरूरी है
0: बहुत जरूरी
1: आज
0: है
1: के परिवेश में,
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर इतना दबाव है मानसिक रूप से
0: हाँ
1: कह दिया जो भी, या पेरेंट्स का या जो भी है, सभी का है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई, और
0: हाँ
1: फिजिकल और इनका जो शारीरिक विकास रुक रहा है,
0: अच्छा
1: जिससे उनको आज के परिवेश को सहन नहीं कर पा रहे। देखिए आए दिन
0: हाँ
1: बच्चे
0: बदल

0: सस्ते परिवेश में। बिल्कुल, खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है
1: जी
0: ना। अच्छा, खेलो इंडिया कार्यक्रम 3 स्तर या 4 स्तर पे मैं समझता हूँ हो रहा है, एक
1: जी जी
0: विश्वविद्यालय स्तर पे, स्कूल स्तर पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं।
1: हमारा दो है सर। अब इसका जो पहला हमारा आ गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया,
0: अच्छा
1: जिसमें 21 वर्ष से कम, और एक है अंडर 17, जिसके स्कूल से ही बच्चे, और हमारा यूथ जिसे नेशनल गेम्स होता है अंडर 18, उससे बच्चों का चयन करते हैं। तो इसमें स्कूल से और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी एसोसिएशन है उससे
0: हाँ
1: बच्चों का चयन करते हैं, उसका नेशनल पर होता है, उसमें नेशनल से चयन करके उस बच्चों को, अब एक स्कीम है, अब तो टेस्ट कर करके उन्होंने अपना खेलो इंडिया का एक स्कीम करके बच्चों को वो एडाप्ट कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लगा रहे हैं,
0: अच्छा
1: उसमें भी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण करके वो अपने आवासीय जो एसटीसी का
0: हाँ
1: सेंटर है उसमें भी वो ले रहे हैं।
0: देवी जी, जैसे मैं थोड़ा सा पिछले प्रश्न पर ले जाऊंगा
1: जी
0: कि आपने जब बच्चे का चयन कर लिया, अपने स्पोर्ट्स
1: जी
0: कैंपस है उसके लिए, फिर क्या उसकी दिनचर्या होती है? आप कैसे उस शुरुआत से लेके, आपका कई स्तर होता होगा
1: जी
0: ट्रेनिंग का, है ना, तो कैसे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं?
1: हम लोग हर बच्चे की एज के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल डिवाइड करते हैं।
0: अच्छा
1: जैसे अंडर बच्चा अंडर 14 है तो उसका अलग होगा, अंडर 16 है तो अलग है, अंडर 19 अलग है, 20 अलग है, मेंस अलग है,
0: अच्छा
1: कुछ एज के लेवल के कंपटीशन में उसको जाना है, उस
0: अच्छा
1: हिसाब से उसका ट्रेनिंग है। और डिपेंड करता हमारा कंपटीशन डेट कि नेशनल
0: अच्छा
1: कंपटीशन कब या इंटरनेशनल का कंपटीशन मेरा कब है,
0: कब है?
1: तो उस हिसाब से हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब ईयरली, मंथली और वीकली प्लान, उसको हम लोग माइक्रो और बोलते हैं मीजो,
0: अच्छा
1: ये प्लान है। अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए लेके चलते हैं, अगर नहीं लड़के को जाना है कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, तो उसका टारगेट हम लोग अभी विजन बना के चलते हैं कि इसको हमको धीरे धीरे हर साल कितना इम्प्रूव करना है उसको।
0: अच्छा
1: बीच में अगर कोई टूर्नामेंट जिससे आ गया हमारा नेशनल का इस तरह का, तो हम उसका ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ईयरली प्लान लेके चल रहे हैं वही रहेगा, लेकिन
0: हाँ,
1: कंपटीशन सेशन आने के बाद थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ गया इस तरह लोड कम करके उसको चेंज कर।
0: ये तो हो गया आपका अलग अलग शेड्यूल बच्चे को।
1: जी
0: पहली बात तो आप ये बताएं कि जो बीच में कंपटीशन होते हैं, एक तो अंतर जनपदीय होता है
1: जी
0: और एक मंडलीय अंतरराज्यीय, है
1: हाँ
0: ना,
1: अंतर्राज्य
0: तो इन कंपटीशनों के लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, या आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है उसी में आप इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं?
1: ट्रेनिंग जो शुरू रहता है उसी को इम्प्रूवमेंट करता है। बीच में अगर कोई स्टेट टूर्नामेंट आ गया
0: हाँ
1: तो हम लोगों को जिसे 10 दिन 15 दिन पहले पता चला, तो वही जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको चेंज करके स्पीड वर्क कराया जाता है। और बाकी मेन फोकस यही रहता है कि हमारा खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी में न जाए, जो कंपटीशन का टारगेट है वो मेन चीज है।
0: हाँ
1: और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है हम लोग का प्रातः और सायं दो चलता है सेशन,
0: अच्छा, तकरीबन कितने घंटे का सेशन होता है, सुबह और शाम का?
1: 3 घंटे का सुबह और 3 घंटे का शाम का सेशन
0: शाम का
1: होता
0: सर
1: है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो
0: हाँ
1: उनका 1-1.5 घंटे का जो एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 7 साल से 8 साल है, उनको कम 3 से 3.5 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है।
0: आपके जो आवासीय बच्चे हैं, लोकल होते होंगे बच्चे, वो
1: जी
0: ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर जाते होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती होगी। जो आपके परिसर में जो बच्चे रहते हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे की जाती है?
1: उनकी पढ़ने की व्यवस्था पूरी सरकार के द्वारा है। ये
0: अच्छा
1: बच्चे यहाँ आते हैं उनका जो हमारे सरकारी कॉलेज होते
0: हाँ
1: हैं जो कैंपस से हमारे नज़दीक हो, उस विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाता है।
0: जी
1: बच्चे उसमें आफ्टर ट्रेनिंग पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद पूरी फीस जो होती है सरकार का है,
0: हाँ
1: मतलब 3,000 रुपया पर ईयर,
0: पर ईयर के हिसाब से
1: ये है सुविधा फीस की, और 2,000 मेडिकल की। और
0: अच्छा
1: बच्चे अगर कहीं खेलने जाते हैं तो उनकी जो अपना सरकारी फेयर है वो उनको मिलता है छात्रावास में।
0: देवी प्रसाद जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खेल नीति बनाई है, तो उस खेल नीति से कितना फर्क पड़ा है? आपके जो खेल प्रोग्राम है या जो प्रदेश का जो स्तर है, वो किस हिसाब से बदला है?
1: हमारा 2023 में खेल नीति लागू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
0: जी
1: तब से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो अपना काम कर रहा था, जो हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है
0: जी
1: वो भी और एक्टिव है। अब स्पोर्ट्स खेल नीति आने से जो हमारे खेल विभाग के, क्योंकि सारे जो फाइनेंशियल खर्च है
0: जी
1: हमारा खेल विभाग करता है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट
0: अच्छा
1: सरकार हमारी करती है, और कोचेज भी कोचिंग देने काम हमारा स्पोर्ट डायरेक्टरेट करता है। एसोसिएशन का काम है कि टूर्नामेंट का डेट आयोजित करना अपना, उनको ऑफिशियल देना, और टीम ले जाने के लिए अपना टीम मैनेजर और करते
0: टूर्नामेंट
1: हैं,
0: का टोटल आयोजन जो होता है वो उसको मैनेज करते हैं,
1: मैनेज
0: समायोजित करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं, और जिसे जो स्टेट के हमारे जो एसोसिएशन है, जो भारत सरकार के फेडरेशन है, तो वो डेट के अनुसार वो समय से आयोजन कराना। और ये भी हुआ कि जब से खेल नीति आने के बाद समय से हमारे आयोजन भी हो रहा है, समय से टीम भी जा रही है, हर चीज है।

0: चीजें शेड्यूल्ड हो गई हैं, है ना?
1: शेड्यूल्ड हो गई है, और उसमें हम लोगों ने शिक्षा विभाग में इन्वॉल्व कर दिया है,
0: अच्छा,
1: और जिसे हमारे कोचेज विद्यालयों में जाके ट्रेनिंग देते हैं कि जो
0: हाँ,
1: बच्चे
0: मैं अभी इस प्रश्न पर आऊंगा
1: जी
0: कि जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम में स्कूलों को शामिल किया गया कि स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाए,
1: जी जी
0: तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? आप कैसे स्कूलों में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं?
1: हमारे यहाँ जितने कोचेज हैं
0: हाँ
1: सभी गेम के अलग अलग कोच हैं, अलग
0: हाँ
1: अलग विद्यालयों में प्रत्येक मंथ कम से कम 2 दिन कम से कम किसी न किसी विद्यालय में जाएं, वहां जाके ट्रेनिंग तो नहीं दे, बेसिक
0: हाँ
1: चीज बताएं और खेल के बारे में कैसे कैसे आए, किससे आपका इससे भविष्य बन सकता है, वहां से आए, वहां अगर संसाधन है तो ठीक, नहीं तो
0: ठीक है,
1: बच्चा स्टेडियम में आके भी प्रैक्टिस कर सकता है।
0: अच्छा
1: ये हम लोग पूरा जानकारी और खेलो इंडिया की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, और जो खेल विभाग की जानकारी उनको सब बताते हैं।
0: खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आपके यहाँ जो अभी पिछले साल की जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बताइए। इस कार्यक्रम के तहत आपने जो
1: जी
0: तैयारियां करवाई, तो हाल ही में जो बच्चे सफलता प्राप्त किए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम या अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स अकेडमी या
1: जी
0: प्रयागराज की
1: जी
0: जो उपलब्धि रही
1: जी जी
0: उसके विषय में थोड़ा सा बताएं।
1: खेलो इंडिया में हमारे यहाँ प्रयागराज की उपलब्धि अच्छी रही है,
0: अच्छा
1: एथलेटिक्स में भी, वॉलीबॉल में भी यूपी की टीम विनर रही
0: अच्छा
1: अंडर 17 में, उसमें हमारे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स छात्रावास के कम से कम 5-6 बच्चे थे,
0: अच्छा
1: और हमारे एथलेटिक्स छात्रावास के 3 बच्चों ने खेला जिसमें 2 का मेडल था, 1 पार्टिसिपेशन था, और हमारे स्थानीय बच्चे, ये नहीं कि केवल छात्रावास के,
0: जी
1: स्थानीय बच्चे भी हमारे गए, हम लोग टोटल एथलेटिक्स में 9 बच्चे गए थे यहाँ से प्रयागराज से, पिछले
0: अच्छा
1: वर्ष की जो हमारा खेलो इंडिया हुआ था चेन्नई में, उसमें काला कि सबका अच्छा अचीवमेंट रहा, पोल वॉल्ट में भी हमारा रिजल्ट रहा, और गेम में जिसे वेट लिफ्टिंग में भी 1 बच्चा था।
0: दीप प्रसाद जी, एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग का खर्च वहन करने में उनको समस्या होती है, वित्तीय रूप से उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है?
1: हमारे यहाँ इस समय एक एकलव्य क्रीड़ा कोष है, तो जो बच्चे स्टेट में मेडल दिए हैं या नेशनल खेले हैं तो वो एक फार्म है, वो जनपद के प्रत्येक स्टेडियम में मिलता है, वो बच्चा लेकर भर के अपने सर्टिफिकेट जो उसकी अचीवमेंट है वो अपने संबंधित एसोसिएशन के प्रदेश सेक्रेटरी से उसको वेरीफाई करा के उसको अपने जो भी जनपद है वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी या क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से वो खेल निदेशालय जाते हैं, तो उस बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उनको पोषण सामग्री या इक्विपमेंट से संबंधित जो भी है सरकार उस लेवल के जिस लेवल का खिलाड़ी
0: आर्थिक
1: उसके हिसाब
0: सहायता।
1: से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
0: अच्छा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो खेलने में बड़े अच्छे होते होंगे और पढ़ने में भी उनकी ठीक पकड़ होती होगी, ऐसे में माता पिता जो हैं उनके वो उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे बच्चों को, और आप चाहते होंगे कि बच्चा खेले, तो ऐसे में कैसे आप उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं या राजी करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े खेल के फील्ड में? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं
1: जी
0: वहाँ ये
1: जी
0: परंपरा है ना कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा IITian बने या बच्चा डॉक्टर बने या बच्चा IAS ऑफिसर प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन बहुत कम ही माता पिता होंगे जो बचपन से ही ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने।
1: जो गार्जियन है हम तो उनको कहते हैं, हम कहे आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा का लायक न बने, लेकिन कम से
0: अच्छा
1: कम उसको एक स्वस्थ नागरिक तो बनने दीजिए जिसे समाज के लिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि वो नहीं कि पढ़ने में ही ठीक है, उसको साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ठीक है, दोनों तरफ पहलू से वो विकास कर सकता है, तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं।
0: हाँ
1: अब गार्जियंस हम लोग कहाँ रोज आते हैं कि सर हमारा बच्चे को किसी तरह मोटिवेट करिए स्पोर्ट्स की तरफ, आज के युग में जब से ये हमारा कोरोना काल से सभी बच्चे मोबाइल की ओर डाइवर्ट हो
0: हाँ
1: गए, ये
0: मोबाइल
1: सबसे बड़ा गार्जियंस के ऊपर बहुत बड़ा है, सभी गार्जियंस इससे परेशान है कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए,
0: अच्छा
1: स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उनको अच्छी दिशा में ला सकते
0: ला
1: हैं।
0: सकते हैं। हमारे रेडियो के माध्यम से आप यूथ को अगर कोई संदेश देना चाहें?
1: हमारा आकाशवाणी के माध्यम से ये सभी गार्जियंस और खिलाड़ियों को जो यूथ लेवल के बच्चे हैं वो किसी न किसी जो ग्रामीण लेवल पर है युवा कल्याण विभाग के मिनी स्टेडियम वहाँ जुड़ें, और जो शहरी क्षेत्र में है या जो आ सकते स्टेडियम में उनसे आप जुड़ें, दोनों टाइम न तो कम से कम एक टाइम स्पोर्ट्स के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को समय दें, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वहीं अच्छा विकास करेगा देश के लिए भविष्य के लिए।
0: जी देवीलाल जी, आपने हमसे बात की और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी लाभकारी जानकारियाँ दी। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और न सही एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में बल्कि अपने जीवन शैली में खेल को शामिल करके एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में जीवन यापन जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई खेल नीति जारी होने के बाद हमारे आसपास प्रदेश और देश में खेल का परिदृश्य बदला है और नए उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो खेल से जुड़ रहे हैं, न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए, मेडल लाने के लिए, और एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ नए उम्र के बच्चे नए नए खेल को स्वीकार कर रहे हैं और सरकारी तौर पर उनको जो इन खेलों की आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बच्चे हैं, एक आर्य देव हैं जो पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं और नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, दूसरे हैं नवीन यादव जो शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले मैं आर्यदेव आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहां से शुरुआत की आपने खेल की, वो समय कौन सा था जब आपको लगा कि आपको पोल वॉल्ट खेलना चाहिए, कहां से शुरुआत की?
2: मेरा नाम आर्यदेव, मेरे पापा किसान हैं तो मैं गांव में रहता था, तो गांव में एक विद्यालय था सर जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो मेरे गाँव के कुछ लड़के जाते थे तो मैं उनके साथ देखने गया था कि अच्छा, क्या होता है स्पोर्ट्स, कैसे होता है, तो वहाँ सर पोल वॉल्ट सिखाते थे तो मैं देखा, काफी हाइट से जंप कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं सीखूंगा इसको, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, तो लॉकडाउन लगने के बाद मैं यहाँ चला आया रूम लेके प्रैक्टिस करने, तो कुछ दिन तक यहाँ रूम लेके प्रैक्टिस किया, उसके बाद हॉस्टल का ट्रायल आया सर।
0: जो आप मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रैक्टिस करते हैं?
2: जी सर।
0: अच्छा,
2: तो मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया,
0: अच्छा,
2: जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: अच्छा,
2: तो सिलेक्शन होने के बाद हमको अच्छे कोच मिले हैं और हमारे सरकारी व्यवस्था अच्छी मिली है सारी चीजें, तो जिसमें रहे कि हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर। हम नेशनल खेल चुके हैं, 4 नेशनल मेडल रह चुका है मेरा सर।
0: 2019 से आपने शुरुआत की और 6 वर्षों में आपके पास 4 नेशनल मेडल हैं,
2: जिसमें 2 साल रेस्ट हो गया था कोविड की वजह से, लॉकडाउन था।
0: अच्छा,
2: तो उसमें कुछ नहीं किया, घर ही था।
0: अच्छा, कुल मिला के 4 साल में 4 नेशनल मेडल है, बहुत अच्छी सफलता है, या यू कहें कि आप प्रतिभाशाली हैं। आर्यदेव, जरा ये बताइए कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के हॉस्टल में आप रहते हैं
2: जी,
0: तो आपका जो खर्च है एक रोजमर्रा आप के जीवन के लिए, जो हॉस्टल है वहाँ रहने का खर्च, खाने का और एजुकेशन का, ये सब खर्चे कैसे मैनेज होते हैं आपके?
2: जी, मेरे सारे खर्चे गवर्नमेंट देती है।
0: अच्छा,
2: वो चाहे स्कूल फीस हो या मेडिकल का हो,
0: अच्छा,
2: या स्पोर्ट्स डाइट का हो, या रूम किराए, सब में सरकारी व्यवस्था है,
0: सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती
2: जी सर।
0: क्या रूटीन होता है आपका जब आप सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद से दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है आपकी?
2: सुबह उठ के सर वही सारी जरूरी प्रक्रिया करते हैं।
0: अच्छा।
2: उसके बाद हमारा असेंबली होता है 6 बजे।
0: हाँ।
2: फिर वहाँ से हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा 3 घंटे तक वर्कआउट चलता है सर।
0: अच्छा।
2: फिर वहाँ से आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें स्कूल जाना रहता है सर, वहाँ हम 3 घंटे क्लास करके आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं सर, फिर शाम को प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, फिर वहाँ से आते हैं, जो हमारी डाइट प्रोटीन रहती है हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं सर, फिर डिनर होता है, उसके बाद फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं।
0: अच्छा,
2: डेली का ही रूटीन है सर।
0: कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मन नहीं लगता होगा कि मूवी देख लेते हैं या खेलने का मन ना हो, तो उस दिन क्या कुछ गैप करते हैं या फिर आप मन को मार लेते हैं?
2: नहीं सर, ऐसा ख्याल तो आता है परंतु जब कंपटीशन पास में होते हैं तो ख्याल कंपटीशन के भी आ जाता है, जैसे मूवी का आया ख्याल, फिर जस्ट उसका कंपटीशन भी, अगर मैं मूवी देखने गया प्रैक्टिस नहीं किया तो कंपटीशन में मेरे कंपटीटर जो आएंगे बाहर से वो हमसे बेहतर कर जाएंगे, तो ये सब सोच के दूसरा मन दबा के रख लेते हैं सर और प्रैक्टिस पे चले जाते हैं।
0: शरीर को फिट रखने के लिए जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह वर्कआउट करते ही हैं, खाने पर कितना ध्यान रहता है आपका, क्या क्या चीजें आप खाते हैं या क्या चीजें खाने से अवॉइड करते हैं कि इन चीजों को खाने से नुकसान होता है तो ये चीजें नहीं खानी है?
2: खाने में सर बाहर की चीजें तो बिल्कुल नहीं खाए, ऑयली चीज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा
2: जी, ये मार्केट वाली चीज कुछ नहीं लेनी चाहिए हमें, जितना हरी सब्जियां, फल या प्रोटीन कुछ होते हैं सर, ऐसे अंडे, केले, ये सब।
0: प्रॉपर डाइट आप फॉलो करते हैं
2: जी? प्रॉपर डाइट हमें डेली का रूटीन है ना सर वो।
0: अच्छा,
2: गवर्नमेंट देती है।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो उसका एक डाइटिशियन होता होगा जो आपकी डाइट डिसाइड करता
2: है। पूरा मेन्यू होता है,
0: पूरा मेन्यू होता है,
2: उसी के हिसाब से चलता है,
0: उसके हिसाब से। अब जब आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हारने का डर लगता है?
2: हारने का डर सर बना रहता है, जैसे कंपटीशन पहले बना रहता है, पर जब कंपटीटर सामने होते हैं तो ये होता है सर, अगर डरेंगे तो हार जाएंगे।
0: हाँ।
2: तो डरना नहीं है, डर हटा के सर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं सर।
0: बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी रिजल्ट जो होगा वो देखा
2: जाएगा। जी सर, डरेंगे तो फिर अगला वाला हम पे भावी रहेगा सर।
0: हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीन यादव जो शॉर्ट पुट के प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। नवीन जी, कैसे आपने डिसाइड किया या पहली बार आपने कब गोला फेंक की प्रैक्टिस की, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा।
3: मैं पहले पढ़ाई करता था अपने पापा के पास, मेरे पापा फौज में सर, जलंधर में पोस्टिंग है पंजाब, तो सर वहाँ पे स्कूल जब ओवर होता था सर, ग्राउंड की तरफ जाते थे तो वहाँ पे देखते थे काफी जो फौज के जो रहते थे सर वो प्रैक्टिस करते रहते थे वहाँ, तो

0: देखता रहता था मैं, तो
1: हाँ
0: देखते थे, मैं भी सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ, तो
1: अच्छा
0: मैं गया भैया सर क्या मैं भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आओ देखो फेंको, फिर फेंके तो काफ़ी थोड़ा अच्छा गया, तो कहें कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उन्होंने काफ़ी 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करवाया। फिर स्कूलों में स्कूल गेम होते हैं, तो वहाँ से मैं पार्टिसिपेट किया स्कूल गेम में उसी इवेंट से,
1: अच्छा
0: तो सर वहाँ पे मेरा मेडल लग गया, मैं SGFI तक गया, तो सर वहाँ से फिर एक मन बन गया कि हाँ यही गेम खेलना है।
1: तो इलाहाबाद फिर कैसे आना हुआ?
0: उसके बाद लॉकडाउन लगा 2 साल
1: अच्छा
0: का,
1: अच्छा
0: तो फिर सर पढ़ाई तो वहीं स्टॉप हो गई, अपने घर आ गए, फिर अब गांव में रहने लगे, फिर वहाँ कोई ऐसा कोच नहीं था कोचिंग देने वाला,
1: अच्छा कोई
0: तो
1: प्रॉपर मतलब ऐसा ना
0: गाइड
1: कोई
0: करने वाला
1: ऐसे
0: नहीं था।
1: गाइड करने वाला नहीं था।
0: पूछा कई लोगों से क्या कहीं मतलब कि हमारे यहाँ स्टेट में यूपी में कहीं प्रैक्टिस करने के लिए है, तो उन्होंने बताया कि जाओ यहाँ हॉस्टल है अपना इलाहाबाद में प्रयागराज में,
1: अच्छा
0: इन सर के पास जाओ, देवी सर के पास, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आया पूछा, फिर बताया गया कि हॉस्टल वगैरह जैसे कैंप वगैरह मिलता है हम लोग को
1: अच्छा
0: ट्रायल देने पे, तो सर वहीं ट्रायल दिए, हुआ सिलेक्शन, सर के पास आए।
1: आपका क्या रूटीन होता है? क्या शॉटपुट का अलग कुछ टेक्निक होती
0: हाँ
1: है?
0: सर, उसके लिए सर बॉडी वेट का ज़रूरी है,
1: अच्छा आपका बॉडी वेट क्या कम होना चाहिए ज़्यादा
0: नहीं
1: हो?
0: ज़्यादा, जितना बॉडी वेट हो उतना कम है।
1: अच्छा मतलब उतना जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा।
0: जी सर,
1: अच्छा
0: सर इसमें वेट ट्रेनिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह चाहिए सर, इसके
1: अच्छा
0: वजह से ज़्यादा ज़्यादा डाइट भी चाहिए इसके लिए, जो सर शॉर्ट पुट रहता है 7.26 kg का होता है। जी सर, उसको फेंका जाता है जितना हो सके।
1: कोई स्पेशल टेक्निक होती है उसको
0: हाँ
1: फेंकने
0: सर,
1: की?
0: इसके लिए
1: कैसे
0: एक
1: फेंकते हैं?
0: सर्कल होता है सर,
1: हाँ
0: उसमें सर उस डिस्को पट होता है सर्किल,
1: हाँ
0: वही सर गोल घूम के फेंकना पड़ता है, उसमें
1: कंधे के ऊपर
0: कंधे पे
1: रखकर।
0: रख के और सर्किल पे घूमना पड़ता है सर,
1: अच्छा
0: उसके लिए टेक्निक होती है।
1: क्या रूटीन होता है? सुबह कितने बजे सो के उठते हैं और फिर दिन भर कैसे बीतता है आपका?
0: सुबह सर वही 5:30 बजे लगभग उठ जाते हैं,
1: हाँ
0: उसके बाद अपना सब कुछ करके नीचे उतरते हैं, 6 बजे असेंबली होती है अपनी, असेंबली करने के बाद वार्म अप वगैरह करके फिर कोच को रिपोर्ट करके
1: अच्छा
0: अपना ट्रेनिंग जो सर बताते हैं हमारे ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जब ख़त्म हो जाती है फिर रिपोर्ट लगाते हैं सर को, ऊपर जाते हैं अपना डाइट लेते हैं सर, डाइट लेने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर स्कूल जाया जाता है। हाँ सर, फिर स्कूल आने के बाद खाना वगैरह खा के फिर रेस्ट करके फिर शाम की ट्रेनिंग।
1: नवीन डेली रूटीन से अलग क्या हफ्ते में कोई रेस्ट डे भी होता है आपका?
0: रेस्ट डे तो नहीं होता सर, जैसे वैसे काफ़ी जब फ्राइडे सैटरडे आता है
1: हाँ
0: सर, उस दिन बॉडी एकदम थक जाती है शुरू
1: अच्छा
0: का वर्कआउट करते
1: हाँ
0: करते
1: हाँ
0: सर, उस दिन एकदम बॉडी चलती ही नहीं है,
1: अच्छा
0: फिर भी सर उसमें थोड़ा बहुत गैप कर लेते हैं वर्कआउट में।
1: कैसे मैनेज करते हैं आप पढ़ाई अपनी?
0: प्रैक्टिस के बाद जाते हैं जो 2-3 घंटे इस क्लास करते हैं।
1: अरदेव जरा आप बताएं क्या है पोल वॉल्ट?
2: पोल वॉल्ट जो है सर एथलेटिक में सबसे टेक्निकल गेम है सर। जब हम रनवे पे खड़े होते हैं पोल लेकर सर, तो जब पोल को ऊपर टांगते हैं हवा में, तो जो हमारा पहला स्टेप निकालते हैं वहाँ से सर, तो वहीं से हमें टेक्निक यूज करनी पड़ती है। 16 स्ट्राइड होता है हमारा रनवे
1: अच्छा
2: पे रनिंग का, तो हर एक स्टेप पे हमको टेक्निक सर देखना, कितने पे पोल डाउन करना है,
1: अच्छा
2: किस लेवल पे हमको प्लांट करना है सर। तो जैसे सर और गेम होते हैं तो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो पोल वॉल्ट है सर ये हमें हवा में काम करना रहता है टेक्निक से। सब में तो आपको सर पता है कि हम जमीन पे कर लेंगे, पर पोल वॉल्ट डेंजरस है सर, हवा में सब कुछ करना रहता है, टेक्निकल गेम है सर। तो बहुत सारा टाइम से टेक्निक होता है सर।
1: आप भी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं अपना?
2: सुबह प्रैक्टिस के बाद आते हैं, ब्रेकफास्ट स्कूल गए सर, फिर रेस्ट किए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर शाम को आके डाइट लिए थोड़ा बहुत सर, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लिए शाम को सर, फिर डिनर करके सो जाते हैं।
1: अरदेव नवीन आपने अच्छी जानकारियां दी, आपके अनुभवों से हमारे युवा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी सुंदरम तिवारी को आज्ञा दीजिए, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, वाचन संपादन एवं प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र पर तैयार किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। पत्रों व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम लेकर मैं स्टूडियो में उपस्थित हूँ, आपका रेडियो दोस्त, रेडियो साथी लोकेंद्र। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपनी फरमाइश के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं 9475078289457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास, हमारे हाथ में पत्र हैं और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी हमारे पास हैं। तो ये पत्र मेरे हाथ में है। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अली खत्री, मोहम्मद सईद खत्री, अब्दुल गफ्फार डावर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें पत्र लिखते हैं। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार।

नवासे मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वेदिका फूलमाली। व्हाट्सएप मैसेज हमें इस गीत के लिए मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। ग्राम गदोरना से मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका, रमन और दिव्या गिरी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम, अब्दुल और जन्नत। कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, अक्सा, नाजिया और इब्राहिम। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मेरा साया का ये गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत राजा मेहंदी अली खान का है और संगीत मदन मोहन का है। नैनों में बदरा छाए हैं, पलकों पर नीर सजाया है, तेरी यादों की इस बारिश में हर लम्हा तुझे बुलाया है।

अभी आपने फिल्म मेरा साय का ये गीत सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर। गीत को पसंद किया है आप सभी ने। सहावर रोड गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा ने इसी गीत को सुनना चाहा है। गांव टोरावाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी और तृप्ता थांदी। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक गीतू और इनके परिवार के सभी लोग। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी अर्चना ताई गोंडानी और इनके परिवार के सभी लोग। जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो पल्स और इनके साथी। गाम बग बुड़वा पथरिया से आप हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही साहिन फातमा फैजान अख्तर और इनके परिवार के सभी लोग। गांव जाखोद राजस्थान से संबुदयाल खटक और बिमला देवी। आप हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ रंजूबाई धाकड़ और इनके परिवार के सभी लोग। ये खत मेरे हाथ में है। आपने लिखा है गांव व पोस्ट राहु नंगली बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह अलका चौहान भूमिका चौहान और अक्षत चौहान और शैलेंद्र ने। कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा लिखते हैं हमें सतना मध्य प्रदेश से। ग्राम शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर का गीत मुकेश के स्वर में। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत शंकर जयकिशन का है। वक्त ने की है ऐसी कारस्तानी अधूरी रह गई हमारी कहानी। पलटकर जो देखे तो धुंधला सा रास्ता किसी मोड़ पर छूट गई है जिंदगानी।

जाने कहां गए वो दिन। श्रोताओं, 954 किलो हर्ट्ज पर इस समय आपने अपने रेडियो 10 आपने इस समय अपने रेडियो सेट, मोबाइल फोन या फिर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इस समय ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए मैं स्टूडियो में उपस्थित हूं, आपका साथी, आपका दोस्त लोकेंद्र। कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म हसीना मान जाएगी से पसंद करने वाले हैं आप सभी। आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। आपने लिखा है विनोदपुरी, वीपीपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, मोहल्ला फतेहगढ़, लुधियाना, पंजाब से। सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सरफराज अब्बासी और अरजान अब्बासी। आपने लिखा है ऊपरकोट बुलंद शहर से। ग्राम नंगला उबुभन, नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नूनी, लालू, नमन, केजल, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और देवा। एमएलबी रोड ग्वालियर से आप हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और एसके पप्पी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से आप हैं तौसीफ हाशमी, कली मंसारी। कोटली कला से आप हैं सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह और मंजीत सिंह। यह फरमाइश हम तक लिखकर भेजी है। ये पत्र है कस्बा उगहती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज और निर्भया गुप्ता। आपने लिखा है छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और शीतल राजेश। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। बीजना मुरादाबाद से हमें पत्र लिखकर भेजा है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष।

और इनके परिवार के सभी लोगों ने। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी और इनके साथी। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। ग्राम दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, तन्वी और इनके सभी लोग। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आपने लिखकर भेजा है फाजिलका पंजाब से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, शालिनी और इनके दोस्त। चतुपुर कुंदरकी से आप हैं एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुहज्जम और गौसिया। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म हसीना मान जाएगी में। शब्द रचना अख्तर रोमानी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। तेरी अदा का जादू जो दिल पर छाया है, हर एक नजर ने बस तुझे ही बुलाया है। हसीन चेहरा तेरा जब भी सामने आया, खुदा ने जैसे कोई ख्वाब सजाया है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म हसीना मान जाएगी में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत आपके नाम के साथ शामिल हो तो आप अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9457078288 इस नंबर पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म किस्मत से, पसंद आप सभी की। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव और निवान शर्मा। धनौरी तेलीवाला से आप हैं निसार सलमानी, नौशाद और अयान बाबू। सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईश अहमद, रविश और रिशान। ये फरमाइश करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान की है। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम और सद्दाम सैफी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी और इनके साथी सभी लोग। वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा हमें लिखते हैं शाहदरा दिल्ली से। चांद मोहम्मद लाल मस्जिद मुरादाबाद से हमें इसी गीत की फरमाइश लिखकर भेजते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी। अनारकली बाजा जरगांव पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक और इनके परिवार के सभी लोग। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय। आपने हमें वर्ली मुंबई से इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज किया है नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान। आप हैं आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय और इनके परिवार के सभी लोग। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी और इनके परिवार के सभी लोग। सुनते हैं फिल्म किस्मत का गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम के युगल स्वर में।

0: श्रोताओं, कुछ और फरमाइश मिली है इसी गीत को सुनने के लिए। आप हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी और सैयद, शेरवानी स्कूल गंजनवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, पटियाली रोज गंजनवाड़ा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और आकिल कुरैशी, लक्सर रोड गांव सुहेड़ी कस्बा पुरकाजी मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, हुजैफा, शाहनवाज और शोहेब, बटिंडा रोड डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और इनके साथी, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा और इनके साथी, मोहम्मद यासीन हाशमी और तौशीफ हाशमी लिखते हैं गंजनवाड़ा से, मोहम्मद फरमान सलमान लिखते हैं दूल्हापुर मुरादाबाद से, आपने लिखा है फारूक अली खान, फैजी फराज गुन्नौर उत्तर प्रदेश से, शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग, अमरोहा नई बस्ती पतई कालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी और इनके साथी। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं। फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव
1: ग्रोथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्ष्य समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के

0: सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. India Today said that the credibility and robustness of its election machinery are well established globally. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Ganesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said, India is deeply saddened by this tragedy. On the reports of India receiving energy requests from Bangladesh, Mr. Jaiswal said, India has an ongoing energy cooperation with the neighboring country. On Pakistan's reaction to India's claims over Shehzad Bhatti terror network, the spokesperson said, India takes issue of terrorism very seriously.